ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तिथि 10, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन

0: मुंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब समय हो गया है कार्यक्रम वंदन वार का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

प्रभु नाम का जाप ही जीवन के सारे कोलाहल को समाप्त कर मन में शांति और एकाग्रता लाता है। जब मन की डोर ही उस परमेश्वर से जुड़ गई तो फिर भला कैसी अशांति।

हे प्रभु, मैं अकिंचन आपके गुण गाऊं, स्वीकार करना प्रभु मुझे जो कदाचित भूल कर जाऊं। एक तुम ही नाथ मेरे, तुम बिन शरण कहाँ मैं पाऊं, चरण अनुरागी बनकर जीवन सफल बनाऊं, भवसागर तर जाऊं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। झरोखा के अंतर्गत आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप किस समय पर सुन सकते हैं।

6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। 7 बजे आप आनंद उठाएंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। हम हैं राही प्यार के, यह कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा 7:30 पर। कार्यक्रम त्रिवेणी लेकर हाजिर होंगे 8:15 पर। चित्रलोक, इस कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे 8:30 पर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर होंगे आपके लिए आज का अखबार कार्यक्रम में, जिसे प्रस्तुत करेंगे 9:30 पर। 10:05 इस समय रहेगा कार्यक्रम सफर सुरीला सा का। FM लाइफलाइन, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 11 बजे। और 11:30 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, सुने हैं मित्रांदे।

12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठाएंगे 1:15 पर। सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 1:30 पर। 2 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी।

3 बजे समय रहेगा कार्यक्रम सखी सहेली का, और 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सेलुलाइड के सितारे कार्यक्रम। 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

6:30 पर अमृत बाणी आप सुनेंगे। 7:00 यह समय रहेगा जय माला का। हवा महल कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे आपके लिए 8:00। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। नौ बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत आप सुन सकते हैं। 10:32 पर कार्यक्रम रहेगा सुर सांझ। तो ये थे झरोखा के अंतर्गत वो कार्यक्रम जो आज आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं और उनका प्रसारण समय।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय हो गया है श्री रामचरित मानस गीत का। जिसे आप विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुनेंगे।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम रामचरितमानस और आज सुनेंगे कड़ी 298।

रावण का दूत शुक, जिसको उसने विभीषण के पीछे पीछे श्रीराम की सेना का भेद लेने के लिए भेजा था, लौटकर रावण को वानर सेना की विशालता और बल का विवरण देता है। उसने द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, शट, जामवंत आदि वीरों के अतुलनीय बल की झलक देखी थी और सहज ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। शुक ने रावण को वास्तविकता से परिचित कराने का भरसक प्रयत्न किया। वे करोड़ों शूरवीर रावण को सहज ही परास्त कर देंगे। सभी वानर समुद्र को सोख लेने या पर्वतों से उसे पाट देने को उतारू हैं। केवल राम की आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही। स्वयं शुक तथा अन्य गुप्तचरों की भी उन्होंने मारपीट कर दुर्गति कर दी थी। वह तो श्री राम की सौगंध सुनकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। शुक संवाद को रावण हंसकर टाल देता है, किंतु जब उसने लक्ष्मण का पत्र उसे दिया तो रावण एक बार भय से कांप गया।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा में किराना घराने का विशेष स्थान है। आज की इस श्रृंखला में हम जानेंगे इस घराने की गायकी की विशेषताओं और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महान संगीत साधकों के बारे में। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा शास्त्रीय संगीत। वो चाहे उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो या कर्नाटक शैली का शास्त्रीय संगीत हो, और ये संगीत संरक्षित हुआ है, सहेजा गया है गुरु शिष्य परंपरा से, और शास्त्रीय संगीत की इस धरोहर को संवर्धित किया है, आगे बढ़ाया है, इसे निरंतर रखा है घरानों ने। और इसीलिए इस श्रृंखला का शीर्षक है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी को,
2: जो हमारी अपनी आकाशवाणी परिवार की सदस्य हैं, आकाशवाणी पणजी से उद्घोषक के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, और मूर्धन्य शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हनगल की शिष्या हैं। और डॉक्टर शकुंतला भरणे आकाशवाणी की अश्रेणी की कलाकार हैं।
1: शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर शकुंतला भरणे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं श्री रोहिदास परब। रोहिदास जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री ऋषित होनावरकर। ऋषित जी, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। शकुंतला जी, ये जो हमारा शीर्षक है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, इस शीर्षक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये शीर्षक चुना है?
3: किराना घराना जी, स्वर प्रधान घराना है, और मैं रही किराना घराने की गाने वाली
1: जी जी,
3: यानी मेरी गुरुजी पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हनगल, उससे पहले पंडित राम राव नायक, जो पंडित फिरोज दस्तूर के शिष्य के शिष्य थे।
1: अच्छा,
3: मेरी शुरुआत ही किराना के स्वर से ही हुई है।
1: संगीत की परंपरा में ये घराने जो हुए हैं, कितने अलग अलग घराने हैं, इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई?
3: संगीत के बहुत सारे घराने हैं, लेकिन मुख्य घराने चार ही है, ये तो हम जानते हैं। अभी देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा से विकसित विशिष्ट गायन या वादन को घराने की शैली।
1: जी जी।
3: सबसे पुराना घराना जो है वो ग्वालियर घराना है।
1: अच्छा।
3: आगरा घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और किराना घराना
1: जी।
3: उसके सिवाय और भी पतियाला घराना, रामपुर घराना, रामपुर सहसवान घराना, भिंडी बाजार घराना, मेवाड़ती घराना, बनारस का घराना, बहुत सारे, इंदौर घराना आमिर खान जी का, और ये सब बहुत सारे घराने हैं। लेकिन मुख्य चार क्यों है कि उनकी परंपरा चालू है।
1: अच्छा।
3: ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना ऐसा माना गया है। ग्वालियर घराने में हिंदुस्तानी ख्याल गायकी का सबसे बड़ा ये प्राचीन घराना है।
1: अच्छा।
3: तानसेन से टाइम से वो आज तक चालू है ऐसा बोलते हैं। सरल और शास्त्र सम्मत प्रस्तुति इसकी विशेषता है।
1: अच्छा।
3: सुबोधता, सुगमता, शास्त्र को एकदम ऐसा स्मूथली लेकर आगे जाना, ये ग्वालियर की खासियत है
1: जी।
3: अब हम सुनेंगे आगरा घराना क्या है। आगरा घराना दमदार आवाज।
1: अच्छा।
3: बोल बाट लहकारी, ध्रुपद अंग, ये सब आगरा की खासियत है। आगरा

0: वाले थोड़ा टेक्निकल रहते हैं, तांत्रिक रहते हैं, यानी ताल के साथ खेलना, इस पर उनका कटाक्ष रहता है। अभी जयपुर घराने के बारे में सुर और ताल दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। जटिल रागों की निवड़ करना, बौद्धिक विचार करना
1: जी।
0: और तान प्रकार भी थोड़ा सा जटिल पेचीदा होता है इसमें जयपुर गायकी में। और गायकी बहुत अच्छी है, बौद्धिक है, वैसा हमारा किराना घराना जो है
1: जी,
0: वो एकदम स्वर प्रधानता वहाँ है
1: जी।
0: स्वर शुद्धता, श्रुति का सूक्ष्म प्रयोग, मिंड और विलंबित लय में राग विस्तार इसकी प्रमुख विशेषता है
1: जी।
0: सुर के लगाव में अचूकता, इसलिए जयन जी किराना घराने का एक ब्रीदवाक्य है,
1: अच्छा,
0: सुर गया तो सिर गया, ताल गया तो बाल गए। किराना घराना कैसा कब शुरू हो गया, उसको किराना कैसा नाम पड़ गया
1: जी।
0: किराना अथवा कैराना,
1: अच्छा,
0: सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है,
1: अच्छा,
0: इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं। कोई ऐसे भी कहते हैं कि महाभारत कालीन दानवीर राजा, हम तो जानते हैं दानशूर कर्ण का आपने सुना है, कर्ण की नगरी को कर्ण नगरी कहते थे,
1: अच्छा,
0: और उनका जो अपभ्रंश हो गया वो किराना हो गया,
1: अच्छा,
0: कर्ण
1: अच्छा,
0: नगरी का अपभ्रंश। और एक बात भी है
1: जी,
0: यूपी के किराना सहरानपुर के एम्परर जहांगीर जो थे राजा, बहुत सारे म्यूजिशियन को उन्होंने रिसेटल किया,
1: अच्छा,
0: रिसेटल यानी तब बाढ़ आई थी और उसके कारण लोगों के घर नहीं थे, घर जमीन दोस्त हुए थे, और कुछ सारंगी वादक, कुछ सतार वादकों के लिए उन्होंने घर बांध के दिया
1: जी,
0: वो उसी गांव में दिया,
1: अच्छा,
0: और इसे प्रस्तापित किया उधर। हमारे किराने घराने के प्रवर्तक खान साहब अब्दुल करीम खान
1: जी,
0: उन्होंने लिखे रखा है कि जिसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं उस शहर का नाम किराना है,
1: अच्छा,
0: अर्थात वो राजा कर्ण का या हुसैनपुर और किराना में 20 मील का अंतर है दोनों गांव में,
1: अच्छा,
0: किराना का मैं यानी खान साहब रहने वाला हूँ, मैं वो किराना गांव के है, और खान साहब बंदे अली भी किराना घराने के रहने वाले,
1: अच्छा,
0: बंदे वाली मालूम है ना,
1: हाँ।
0: बंदे अली खान यानी वो बिनकार बंदे अली खान कहते, उनके अच्छा, घराने से ही हमारा घराना ताल्लुक रखता है
1: जी,
0: कि वो रुद्र वीणा बजाते थे,
1: अच्छा,
0: बंदे अली खान
1: जी,
0: वो भी उसी गांव के है, इसीलिए कहते हैं कि वो घराना बंदे अली खान से उधर से ही आया है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: किराना घराने के बारे में बहुत सारी दंतकथा भी मिलती है। एक प्रसिद्ध दंतकथा संक्षिप्त में आपको बता दूं
1: जी,
0: राजा मानसिंह ग्वालियर के दरबार में नायक धोंडू और नायक मन्नू थे। नायक यानी प्रतिभावान, सृजनशील
1: जी।
0: नायक धोंडू कृष्ण भक्त थे बहुत ही, उन्होंने वृंदावन में जाकर तपश्चर्या की और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए,
1: अच्छा,
0: और तुम्हें क्या वर दूं ऐसा उन्होंने पूछा,
1: अच्छा।
0: तब धोंडू नायक ने कह दिया, क्या कह दिया, तुम्हारे बांसुरी के स्वर मेरे गले में दे दे।
1: ओहो,
0: नायक धोंडू और नायक मन्नू,
1: हाँ,
0: यह घराने की शुरुआत उनसे हो गई,
1: वहां से हुई,
0: हाँ। और कुछ लोग इस गायकी का संबंध गोपाल नायक से जोड़ देते हैं, नियाज अहमद, फैज अहमद, खान साहब किराना घराने का परंपरा का नायक बैजू बावरा, उसी संबंध से ये यहाँ मानते हैं। किराना घराने के वंश परंपरा में दो मत प्रवाह है
1: जी।
0: पहला, किराना घराने की गायकी वंश परंपरा को जिनको मिली है वो मशकूर अली खां, आपने नाम सुना होगा, मशकूर अली खां, और उन्होंने अपनी परंपरा के अपने जो संकेत स्थल है उधर सब दे दिया है,
1: अच्छा।
0: दूसरा जो है अब्दुल करीम खान साहब का, जिसे हम हमारे घराने के प्रवर्तक कहते हैं, लेकिन उससे पहले भी किराने घराने का बहुमूल्य योगदान दिया गया है, यानी कितने सालों से पहले आप सोच सकते हैं
1: जी, जी, जी।
0: पहली शाखा तो हो गई और शुरू का जो धोंडू नायक थे वो 1456 थे। बाद में गांजी खां 1656, रहमत अली खां 1748
1: जी,
0: वाजिद अली खां और काले खां का तो साल नहीं मिला, अब्दुल करीम खां 1872
1: जी,
0: सुरेश बाबू माने और बाद में सवाई गंधर्व, उसके बाद तो सबको मालूम है,
1: हाँ। जी,
0: उसके बाद डॉक्टर गंगूबाई हनगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व का ये शिष्य

0: परिवार है
1: जी।
0: सुरेश बाबू माने का शिष्य परिवार, उससे पहले वहीद खां और अब्दुल करीम खां। वहीद खां के शिष्य सुरेश बाबू माने हीराबाई बड़ोदेकर और जिसके गुरु अब्दुल करीम खां के इससे जो आए हैं वो हीराबाई बड़ोदेकर का प्रभा अत्रे, माणिक वर्मा, वामनराव देशपांडे, बसवराज राजगुरु, ये सब वहीद खां की परंपरा से आए हैं।
1: जी जी जी।
0: उसके बाद जो आया है तो हमारा गंगूबाई हनगल के सारे शिष्य,
1: हाँ जी,
0: उनकी बेटी कृष्णा हनगल, पंडित नागनाथ वडेर
1: जी,
0: सुलभा निरलगी थी, अशोक नाडगिर है और मैं डॉक्टर शकुंतला भरणे उनकी शिष्या। फिरोज दस्तूर के भी शिष्य है अच्युत अभ्यंकर,
1: हाँ जी,
0: सुधा देवेकर, मिलिंद चित्ताल, गिरीश संसगिरी, उषा देशपांडे
1: जी,
0: और अब रहे हमारे मास्टर पंडित भीमसेन जोशी का शिष्य परिवार
1: जी,
0: माधव गुड़ी, आनंद भाटे, श्रीकांत देशपांडे, श्रीनिवास जोशी, उपेंद्र भट्ट, नाम का लिस्ट तो बहुत बड़ा है
1: जी।
0: आजकल के गायक में कैवल्य कुमार गुरव, पंडित जयतीर्थ मेवुंडी, वो तो आपको पता है। आज भी किराना घराने का जो सुर का लगाव है वो ऐसा ही है। सब घरानों के लोग किराना घराना का सुर पकड़ के ही आगे जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये घराने का सुर का एक अलग ही
1: क्या बात है
0: पहचान।
1: ये जो अनूठी परंपरा है, हमने नाम भी वैसा ही दिया कि अनुपम परंपरा तो इस परंपरा के बारे में और विस्तार से हम अगली कड़ियों में सुनेंगे।
0: बहुत सारी चर्चा है
1: जी।
0: और आज तो हमने बहुत बात की है इसके बारे में, लेकिन स्वर क्या है, इसका महत्व क्या है, ये समझने के लिए सुर संगम का एक बहुत ही प्यारा गाना है,
1: आए सुर के पंछी आए।
0: हाँ,
1: आइए सुनते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दिन है सुहाना आज पहली तारीख है,

पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना, करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

सोए नहीं रात से, खेती को गम है कि पैसों चलो हाथ से। अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, लुटेगा खजाना आज।

0: खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाचने का दसाना, पाचने का दसाना, पाचने का दसाना।

0: मेरा लाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है आज पहली तारीख है।
1: पहली तारीख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, सुधीर फड़के का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज संगीतकार सी अर्जुन का जन्मदिन है और उनके संगीतबद्ध कुछ गीत आपको इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं।
2: ओ, चल जाए तेरा जादू जिस

0: अरूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: गलियन में मिलना मिलने जुलने के जालिम ठिकाने हजार
1: ना बबना कोई

0: पूछना हुई पे तो मेलन में चोरी से मिलना, चोरी से मिलना को पूछे तो बोले दुल्हनिया हमारे
1: बाप बना कोई देख लेगा।
0: चोरी मिलना हो मिलना रे नदिया के पास।
2: सुशीला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें, जानिसार अख्तर के बोल और सी अर्जुन का संकेत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के बाकी नगमे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सी अर्जुन के जन्मदिवस के मौके पर उनके संगीतबद्ध कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: का तारा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। कवि प्रदीप ने इसे लिखा, सी अर्जुन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे मैं और मेरा भाई फिल्म का ये गीत। जानिसर अख्तर के बोल सी अर्जुन का संगीत। सी अर्जुन के जन्मदिन पर आज उनके गीत, उनके संगीत बद्ध गीत आपको भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवा रहे हैं। रक्षाबंधन फिल्म का ये गीत सुनते हैं, उषा मंगेशकर की आवाज, कवि प्रदीप की बोल, सी अर्जुन का संगीत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में पालकी फिल्म का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं।

0: राम और श्याम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर के साथ साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: स्वागत है विविध भारती पर, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। और अंतराल से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया मिलन फिल्म से गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फर्ज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए सुनते हैं तकदीर फिल्म से एक गीत, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा तिमोती की।

यादों का सिलसिला गीतों के साथ चलता ही रहता है, और हम भी आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में आज से शुरू हुई एक नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, पहली कड़ी आज आपने 6:45 पर सुबह सुनी, और अगर सुना रह गया तो शाम 6:45 पर पुनः प्रसारण के जरिए आप इसे सुन सकते हैं। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, और आज शाम को सुनना ना भूलिएगा सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम, जिसमें अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत आप सुन सकते हैं। और इस वक्त कार्यक्रम हम है राही प्यार के खत्म करते हैं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56%

0: आते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
4: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का

0: नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
1: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
1: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन

0: के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
4: आइए सुने त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें सिर दर्द की। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वो दर्द जो कि हमारे सिर के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग कारणों से होता है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम, ठंड, एसिडिटी, मौसम के बदलने का असर सिर दर्द के रूप में सामने आता है। इसके कारण कई बार हमें बिल्कुल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं और उसी के अनुसार उनका इलाज भी होता है, पर आम तौर पर सिर दर्द के दौरान सीधा सा उपाय पेय पदार्थों का सेवन और स्क्रीन से दूरी ही है। बस आंखें बंद करके लेट जाइए और हो सके तो किसी से सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश भी करवा सकते हैं, जो कि आपके सिर दर्द से आपको राहत दिलाने में कारगर होगा।

पड़े हाथ इत तगड़ा, प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ इक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बब

सिर दर्द के स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बात तो हमने की, लेकिन कुछ सिर दर्द अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ आदतें और कुछ लोग भी कई बार सिर दर्द की श्रेणी में आते हैं। सिर दर्द कहलाने वाली आदतों में शुमार हैं चुगली, बेवजह के सवाल जवाब या नकारात्मकता का पिटारा, जो कई बार हमें सामान्य नहीं रहने देता। वैसे ही कुछ लोगों की फितरत भी इस तरह की होती है, जो हमें कई बार सिर दर्द की हद तक ही परेशान कर देती है। इस तरह के सिर दर्द की खासियत या कहें मुसीबत ये होती है कि इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो कोई चंपी काम आती है और ना ही कोई दवा। इनसे बचने का सीधा सा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को देखते ही हो जाइए 9-2-11, वरना आप भी यही कहें।

जैसे कुछ आदतें और लोग सिरदर्द होते हैं, उसी तरह से कई काम भी हमें सिरदर्द ही लगते हैं। जैसे बैंक, ऑफिस या स्कूल में तरह तरह के कामों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना, किसी के बड़े से खत का जवाब देना, किसी के इत्मीनान से कहे जा रहे वॉइस मैसेज को सुनना और भी न जाने क्या क्या। सबके अपने अपने अलग सिरदर्द होते हैं, हो भी क्यों ना, सबके सिर अलग अलग हैं और उनके दर्द झेलने की क्षमता भी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिरदर्द चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या हो किसी आदत, काम या व्यक्ति संबंधी, उससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए जीवन उतना ही आनंदपूर्ण हो जाता है। जीवन में आनंद बढ़ाने और हर प्रकार के सिरदर्द को कम करने का एक कारगर उपाय है संगीत। अच्छा संगीत आपको स्वस्थ और आनंदमय रखता है। जब

हमारी यही है कामना कि आपको जीवन भर न करना पड़े किसी भी तरह के सिरदर्द का सामना। और इसी के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जाँच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: खेले हम जी जान से, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सिने सिंगर्स एसोसिएशन ग्रुप कोरस ग्रुप की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, सुहेल सेन का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: अजय गोगावले की आवाज में आप सुन रहे थे झुंड फिल्म का ये गीत। अजय अतुल के संगीत से सजा ये गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: रानी सिंगर।
1: अल्फाज योयोहनी सिंह के लिखे इस गीत को आप सुन रहे थे। योयोहनी सिंह ने इसे संगीत से सजाया, उन्हीं की आवाज और साथ में स्वेताज बरार की आवाज आपने सुनी छलांग फिल्म के इस गीत में। और एक छलांग हमें भी लगानी है लापरवाही से स्वास्थ्य की ओर, क्योंकि राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह शुरू हो चुका है जो मनाया जाता है सितंबर माह के पहले सप्ताह को, यानी कि 1 से 7 तारीख तक। 1982 में पहली बार ये दिवस मनाया गया और इसे शुरुआत की गई इसकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की खाद्य और पोषण बोर्ड के द्वारा। क्योंकि क्यों शुरू किया गया इस दिन को, कि ताकि पोषकता से भरा एक संतुलित भोजन हमारा रोज हो और इसे खाने के लिए हम प्रोत्साहित हों, इसीलिए इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, या कहें कि सप्ताह को मनाया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो कुपोषण से दूर हों, स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा, बीमारियों से हम बचें और जागरूकता बढ़े हमारे अंदर कि अच्छा स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, उचित पोषक तत्वों को हम अपने खाने में शामिल करें, खान पान कुछ ऐसा रखें कि सारे पौष्टिक चीजें जो हैं हमारी थाली में जरूर समाएं और हमें मधुमेह, हृदय की बीमारियों या मोटापे जैसी परेशानियों से बच सके हम। लेकिन जब भी हम कहीं जाते हैं और हमारा मन देखता है किसी अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों से साफ साफ यही मतलब है कि भाई जो हम देखते हैं, फास्ट फूड देखते हैं, मसालेदार भोजन देखते हैं, तले हुए जब पदार्थ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना इन पर टूट पड़े और बिल्कुल इस दावत का आनंद लिया जाए। तो लेकिन बाहर के खाने से जितनी दूरी हम रखें उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। घर पर पौष्टिकता से भरपूर उन चीजों को बनाया जा सकता है, उन चीजों में पौष्टिक चीजों को कह सकते हैं कि उनमें बदलाव करके विकल्प उस वैसा लिया जा सकता है कि हम जो बाहर की चीजों को देखकर लालच आती है उससे थोड़ा दूर कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि बात दावत की हुई है तो कुछ ऐसा ही गीत सुन लेते हैं।

कौसर मुनीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, साजिद वाजिद का संगीत, जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजें, दावते इश्क फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। और वाकई अगर कोई हमें दावत पर बुलाता है तो हम भले ही शुरुआत में नानुकुर करते हैं लेकिन पहुंच जाते हैं सीधे सीधे दावत खाने, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें, ऐसी लजीज चीजें जब सामने दिखती हैं तो कैसे हम खुद को रोकें। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि अब डाइट की जाएगी और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, अच्छी आदतें ली जाएंगी, लेकिन मुश्किल तो होता है अपने मन को, अपने दिल को मनाना।

0: अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत के साथ, आवाजें बेनी दयाल और शेफाली अलवारिस की, और ये गीत हमने लिया ये जवानी है दीवानी फिल्म से। तो किस तरह से करें अपने इस दिल को काबू में, बताएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

दैन दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। शंकर एहसान लॉय का संगीत, टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत आपने सुना। और हमारा दिल भी बिल्कुल टू स्टेट में रहता है कि स्वास्थ्य की ओर जाए या लालच की ओर, किसे चुने। जब भी बात आती है कि डाइट की जाए या पोषकता को अपने खाने में ध्यान दिया जाए उसका, तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। एक दो दिन की डाइट तो फिर भी चल जाती है, लेकिन आगे जब अपनी सब पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना होता है, आमतौर पर पता नहीं क्यों हमें वही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारा मन तो उसी ओर हमें लेकर जाता है, बार बार उसी ओर लेकर जाता है, और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो जब किसी तरह की मजबूरी हमारे ऊपर आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ जाती है, तो कुछ दिन तो हम ये फॉलो करते हैं, कुछ दिन तक हम ये मानते हैं कि भाई ये नहीं करना खाना है या वो नहीं खाना है, लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगती है और स्वास्थ्य के अच्छे होने की खबर हम तक पहुंचती है रिपोर्ट्स के जरिए, या हमारी अच्छी सेहत हमारे चेहरे पर नजर आने लगती है, तो हमारा मन एक बार फिर हमें उन्हीं गलियों में ले जाना चाहता है जिन गलियों से हम किसी तरह से निकल कर अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर खुद को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा खुद के साथ सख्त होना भी पड़ता है कभी कभी, कभी कभी मन को समझाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ आप सोचिए कि खुद से आपको प्यार करना है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो तो हर दिन त्योहार ही होता है।

0: आई लव न्यू ईयर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बातें कर रहे हैं पौष्टिकता की या कहें राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह के मौके पर हम बात कर रहे हैं अपने जीवन में पौष्टिकता हम कैसे ले आ सकते हैं खान पान में और किस तरह से जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं उन्हें अपने खान पान से दूर कर सकते हैं। तो जब भी हम डाइट करने का एक फैसला करते हैं तो एक मौके पर जाकर हमारा मन हमें वापस उस ओर ले

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत लुटेरा फिल्म के इस गीत में। और जब भी हम कदम बढ़ाते हैं स्वास्थ्य की ओर तो कुछ इसी तरह से मन गुनगुनाता है और जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत बदलाव आ गया है। शरीर भी हमें हल्का लगता है, चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है, लेकिन इस ओर बढ़ने के लिए ऐसा लगता है जैसे ये लुटेरा फिल्म का गीत था, लगता है कि हमारी सारी खुशियां ही लुट गई हैं, कुछ भी हमें खाने पीने नहीं मिलता। पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ये अगर हम सोचें तो एक बड़ा बड़ा जो हम कदम उठाते हैं ना, कि बड़े बड़े फैसले लेते कि आज के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाएंगे, मिठाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और इस तरह के जब बड़े बड़े हम फैसले लेते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें ज्यादा लगने लगते हैं, दबाव लगने लगता है कि क्या करें। इसलिए जब हम जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। स्वास्थ्य की ओर भी इसी तरह से आप छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप इन कदमों के जरिए ही एक बड़ी मंजिल को पा भी सकते हैं। तो छोटे कदम क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा कदम तो ये हो सकता है कि आप भोजन में नमक और शक्कर की मात्रा धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। तो इससे आपका जीवन तो बदलाव आएगा ही आपके जीवन में, और साथ ही साथ आपको अपने आप ही ये बदलाव महसूस होंगे। तो चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं, आज के लिए इतना ही प्रण काफी है।

श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे समीर के बोल, इल्याराजा का संगीत चीनी कम फिल्म के इस गीत में। और आप भी सोचिए कि आज से अपनी चाय कॉफी में लेंगे चीनी कम और रखेंगे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, साथ ही बनेंगे अपने ही स्वास्थ्य के नजरबट्टू।

0: तो आज से रखेंगे अपना ख्याल और अपने स्वास्थ्य के ख्याल, इसी वादे के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
5: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
6: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
5: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
6: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
5: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
6: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
5: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: लीजिए पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
7: आज का अखबार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत।
8: ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मना।

0: नशा बड़ा।
1: भाई आप भी सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह हमें क्या हो गया है, खाने पीने के गीतों से दिन की शुरुआत। दोस्तों आज है राष्ट्रीय पोषण दिवस और हर साल 1 से 7 सितंबर तक हम पूरा सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में हम खाने पीने की बात भला क्यों ना करें। वैसे भी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, लेकिन आजकल लोगों के साथ साथ हमारी खाने की जो थाली है वो भी आधुनिक हो गई है। सब्जी देखकर बच्चों की नाक ऊपर चढ़ जाती है और पिज्जा देखते ही मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है। पर दोस्तों ये बात ध्यान देने वाली है कि स्वाद के साथ साथ पोषण भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि शरीर कोई मोबाइल नहीं है कि कम बैटरी पर भी बस चार्जर लगाकर वो चलता रहे। हमारे जो शरीर है उसको प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट,

वसा और पर्याप्त पानी प्रचुर मात्रा में चाहिए, यानी थाली में भी एक छोटी सी टीम होनी चाहिए। सब्जियां, दालें, अनाज, फल, दूध या उसके विकल्प सब मिलजुल कर खेलें, तभी सेहत का मैच जीता जा सकता है। पोषण का मतलब ये नहीं है कि खाना महंगा हो। संतुलित भोजन हमारे आसपास मौजूद सामान्य और स्थानीय खाद्य पदार्थों से भी मिल सकता है। दाल, चना, मूंगफली, हरी सब्जियां, मौसमी फल, मोटे अनाज और पर्याप्त पानी, ये सब हमारी सेहत के सच्चे दोस्त हैं। और एक बात याद रखिए, नाश्ता छोड़ना कोई आपकी स्मार्टनेस नहीं है। हम अक्सर स्किप कर जाते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं करना है। सुबह का नाश्ता शरीर के लिए वैसा ही है जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। बिना ईंधन के गाड़ी कितनी भी महंगी हो आगे नहीं बढ़ेगी, तो क्यों ना आज से ऐसी थाली सजाएं जिसमें स्वाद भी हो और संतुलन भी और सेहत भी।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अब बारी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की।

आज से भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पर भौतिक यानी कि फिजिकल मुहर लगाने की अनिवार्यता को किया गया समाप्त। यात्री अब मोबाइल में ई बोर्डिंग पास दिखाकर भी इमिग्रेशन करा सकेंगे। टैक्स से लेकर बैंक एफडी तक आज से होने जा रहे 5 बड़े बदलाव। सितंबर में बदलेंगे कई वित्तीय नियम, आम लोगों की जेब पर होगा सीधा असर। भारतीय नौसेना में आईएनएस निपुण शामिल, 300 मीटर की गहराई तक ऑपरेशन में सक्षम। भारत की तर्ज पर चीन से भी हर 10 मिनट में अलर्ट मांगेगा नेपाल, सुरंगों में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिशें तेज हुई। सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में शामिल लियोनेल ने की संन्यास की घोषणा। अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली तिमाही में 7.8% रही देश की आर्थिक विकास दर। यूक्रेन से युद्ध के बीच पीएम के रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, एंडलेस वॉर से निकलकर एंड ऑफ वॉर की तरफ बढ़ें। एक महीने बाद अमेरिका ईरान फिर आमने सामने, अमेरिका का लारक द्वीप पर हमला, ईरान का पलटवार, क्रूड 3.5% महंगा। प्रधानमंत्री मोदी का ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से व्यापार बढ़ाने का वादा।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अब रुख करते हैं क्षेत्रीय खबरों की ओर। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 9 सितंबर से 6वीं से 12वीं की परीक्षाएं, स्कूल प्रमुखों को पेपर तैयार करने का जिम्मा, सितंबर की टर्म एक परीक्षा का पैटर्न बदला, रटने से नहीं चलेगा काम, 50% सवाल जांचेंगे बच्चों की समझ। पंजाब में बिजली के रिकॉर्ड मांग के बीच थर्मल प्लांटों में कोयले का स्टॉक घटा, 4 थर्मल प्लांटों में 8 से 15 दिन का ही कोयला बचा। रोपड़ लहरा के 5 यूनिट पहले ही बंद, 1130 मेगावाट उत्पादन ठप। हरियाणा के पटवारी और कानूनगों की हड़ताल समाप्त, डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य अब सैटेलाइट के माध्यम से होगा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कल 4 विधेयक पास, 10 आज होंगे पारित। निजी वीवी, राज्य महिला आयोग, पंचायती राज, GST, कारोबार का अधिकार और ग्राम श्यामलात भूमि से जुड़े विधेयक आज होंगे पेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में स्पष्ट किया है कि हस्ताक्षर वाला चेक बाउंस तो सिक्योरिटी चेक कहकर केस खत्म नहीं होगा। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी क्षेत्रीय खबरें।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आइए आज का अखबार कार्यक्रम में अब बात करते हैं स्थानीय खबरों की।

चंडीगढ़ की आबो हवा के अच्छे दिन, अगस्त में 27 दिन गुड कैटेगरी में रहा AQI। आज से किसानों का आंदोलन, चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर की सड़कें होंगी प्रभावित। चार सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 14 को गणपति विराजेंगे और 26 से पितृपक्ष शुरू। लीवर ट्रांसप्लांट में रोबोटिक सर्जरी अब डोनर से आगे, रिसिपिएंट तक भी पहुंची। 5 साल के बच्चे में रोबोटिक ट्रांसप्लांट। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बिजली क्षमता 1600 KVA तक बढ़ेगी।

पीजीआई की ईएनटी विभाग ने 7 माह के बच्चे के दोनों कानों में कॉक्लियर इम्प्लांट देश में पहली बार पीजीआई ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। चंडीगढ़ को 25 साल तक सूरज से बिजली, 50 मेगावाट ऊर्जा का करार, सीपीडीएल का और एसईसीआई से हुआ समझौता। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी स्थानीय खबरें।

आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 1 से 7 सितंबर तक हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अब आपसे एक सवाल भी करते हैं कि पोषण युक्त खाना तो तभी हमें मिलेगा ना कि अगर हमारी धरती जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो, क्यों सही कहा ना। तो इसी बात से जुड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे पास। 20 एकड़ बंजर जमीन में लहलहाई हरियाली। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ वो भी आपको बता दें। तिरुवंतपुरम केरलम के एसवी सुजीत ने समुद्र किनारे की पोषक तत्वों से खाली रेत को खेती की जमीन में

बदलकर मिसाल कायम कर दी है। और ये क्या किया इन्होंने, किस किस का सहयोग लिया वो भी आपको बता दें। इस क्षेत्र के किसानों द्वारा 20 एकड़ जमीन पर 23 किस्म की हरी सब्जियां अब उगाई जा रही हैं। रोज करीब 1 टन उत्पादन हो रहा है। और आज सुजीत आर्वम 2026 अभियान चलाकर लोगों को एग्रो टूरिज्म से जोड़ भी रहे हैं। तो इन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी और इसी कार्य में अपने जीवन को लगा दिया है कि जो सूखी जमीन है उसे हरा भरा कैसे किया जाए और पोषण युक्त खाना उससे कैसे प्राप्त किया जाए।

0: आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है SCO के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल है। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी संगठन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत के लिए SCO प्रमुख देशों के साथ सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा, संपर्क और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला

0: सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्यवाही में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री जोशी ने NCERT को भारत की स्कूली शिक्षा की आधारशिला और युवा मस्तिष्कों की पीढ़ियों को संवारने वाला एक अहम संस्थान बताया। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मैच में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी

सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर और अपने सभी लिसनर्स के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम सफर सुरीला सा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐश्वर्या पंडित की आवाज में। नॉन फिल्मी गीत है ये।

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

0: मोहम्मद अजीज अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना मृत्युदाता फिल्म से। संगीत दिया आनंद मिलिंद ने।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज नियर रेलवे स्टेशन।

0: वाला शहर फोन 8950632224।
1: अब आप सुनेंगे अखिल सचदेव को।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा, जो कि फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत पर आधारित रहता है। अब आप सुनेंगे मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

सफर सुरीला सा कार्यक्रम का आनंद आप उठा रहे हैं और अगला गीत आप सुनेंगे खलनायक फिल्म से। आवाजें हैं मनहर उधा, सलका याग्निक व साथियों की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एल्बम से, आवाजें हैं गुल सक्सेना और किरण की।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान. पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुरीला सा। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम FM लाइफलाइन का।
4: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
2: FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, और अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे घंटों मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग कैसे हो, इस विषय पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू मिस्टर कपूर।
2: डॉक्टर साहब, आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे जाने अनजाने मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है?
5: उनके ओवरऑल स्वास्थ्य के फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे दोनों पे प्रभाव पड़ता है। फिजिकल हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, स्क्रीन के आगे देखते देखते खाना खाने से बच्चों में ओबेसिटी की समस्या आती है, वो खेल नहीं खेल पाते, जिससे उनका शारीरिक विकास, खेल के दौरान जो वो सोशल लर्निंग करते हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं, खेल अपने आप में एक संपूर्ण टीचिंग है, वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं। मानसिक तौर पे बच्चों के अंदर इनअटेंशन की समस्या, हाइपर एक्टिविटी की समस्या, इंपल्सिव हो जाते हैं, एकाकी अलूफ रहने लग जाते हैं, उनकी भाषा बोली जो कम्युनिकेशन है वो उतना अच्छा विकसित नहीं हो पाता, ये सब छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं। बड़े बच्चों के अंदर फिजिकल ग्रोथ तो प्रभावित होती है, उनके अंदर भी जो ब्रेन के हायर फंक्शंस हैं, किसी काम को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, कोई परिवर्तन आ जाए तो इसके हिसाब से मॉडिफाई करना, ये सब क्षमताएं थोड़ी प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि अटेंशन की क्षमता को एक्सेसिव स्क्रीन यूज प्रभावित करता है, और फिजिकल जो प्रभाव हैं वो तो बहुत ज्यादा ही हैं, और स्क्रीन के यूज से जो इनअप्रोप्रिएट, एज इनअप्रोप्रिएट जो डेंजरस लर्निंग है, जो आपको पता है, जो इनअप्रोप्रिएट मटेरियल जो सोशल मीडिया पे स्क्रीन के द्वारा उपलब्ध है, उसके प्रभाव तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो सकते हैं।
2: जी, और मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
5: जैसा कि मैंने बताया, जो छोटे बच्चों के अंदर जब ज्यादा देखते हो तो उनमें एक बच्चों में दो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बड़े कॉमन होते हैं, एक ADHD और एक ऑटिज्म। तो जो बच्चों के अंदर ज्यादा ये सब देखने से इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिविटी के लक्षण बढ़ जाते हैं, तो लगता है कि कहीं इन्हें ADHD ना हो गया हो, जबकि वो एक्सेस इनअप्रोप्रिएट, एज इनअप्रोप्रिएट स्क्रीन यूज से हो रहा है। ऐसे ही कुछ बच्चे बहुत एकाकी हो जाते हैं, उनमें एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट नहीं।

0: होता तो लगता है कि इनको वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है। तो इस तरह के मानसिक प्रभाव छोटे बच्चों पे पड़ते हैं। कई बच्चों को देख के लगता है कि कहीं ये डिप्रेस्ड तो नहीं हो गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा किशोरावस्था के अंदर स्क्रीन के अंदर खो जाते हैं, जो उनकी पहले जो सोशलाइजेशन था, जो फंक्शनिंग थी, वो प्रभावित हो जाती है। तो हमें लगता है कि इनमें डिप्रेशन जैसा या कोई और मनोरोग तो नहीं पैदा हो रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया, तो जो बच्चे ऑलरेडी हाइपर एक्टिव हैं या जिन बच्चों को ऑटिज्म है या फिर जिन बच्चों को डिप्रेशन है, अगर वो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है?
0: देखिए, ये जितने भी विकासात्मक रोग हैं, ADHD, ऑटिज्म वगैरह, इनके जैसे लक्षण नॉर्मल बच्चों में अगर वो एक्सेस स्क्रीन देखें तो उनमें इनके जैसे लक्षण आ सकते हैं। परंतु जिन बच्चों को ये विकासात्मक समस्याएं हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, अगर वो बहुत ज्यादा ये चीज देखें तो उनकी हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि स्क्रीन के अंदर क्या होता है, वो और चीजों में तो ध्यान नहीं लगा पा रहे अपनी इन कंडीशन से। माँ बाप सोचते हैं कि इसके बहाने ये टिक जाता है। वो इसलिए टिक पाता है क्योंकि उनके अंदर बड़ा रैपिडली बच्चे को एक के बाद एक टेंट मिलता है, वो उसको उसकी तरफ खींचे रखता है। तो उनके अंदर भी यही सभी आयाम और भी ज्यादा प्रभावित होने लग जाते हैं। हालांकि कुछ ऑटिज्म के बच्चों के अंदर, जिनके अंदर कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो रहा है, उनमें कई बार ये चीज फायदा भी करती है कुछ कम्युनिकेशन को सिखाने में, और कुछ थेरेपीज में, कुछ एप्स में इनका यूज भी होता है। इसी प्रकार कई बार हम जैसे व्यस्क हैं तो हमको कोई अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह हो तो हम नशों के शिकार हो जाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल। उसी तरह बच्चे कई बार स्क्रीन के व्यवहारिक नशे के शिकार हो जाते हैं अपनी एंग्जाइटी अवॉइडेंस को ओवरकम करने के लिए, डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। तो उन परिस्थिति में किशोर बच्चों में इसका यूज बढ़ सकता है और वो उनकी बीमारी को छिपा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने स्क्रीन टाइम की बात की, तो बच्चों के लिए हर रोज कितना स्क्रीन टाइम उचित है, अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो?
0: देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मेरा ये मानना है, जो मेरा अनुभव है बच्चों के साथ काम करने का, कि 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो किसी भी प्रकार का स्क्रीन टाइम मुझे उचित नहीं लगता। पर फिर भी मैं अगर कहूं तो 2 से 5 वर्ष के बच्चों को तो किसी भी प्रकार का स्क्रीन का एक्सपोजर हमें मोबाइल इत्यादि का बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, हैंडहेल्ड डिवाइसेस का, क्योंकि उसके काफी ज्यादा दुष्प्रभाव हैं। उसके बाद जो समाज में बदलाव आ गया, अगर एजुकेशनल नीड्स से या बिग स्क्रीन्स पे जो हम प्रोग्राम्स बच्चों को दिखाते हैं, उनका सुपरवाइज्ड वे में, जब माँ बाप साथ बैठे हो, उनकी टाइम लिमिट हो, और जबकि उनकी दूसरी चीजें प्रभावित ना हो रही हो, जो उनका खेल का समय, पढ़ाई का, आराम का, नींद का, तो कोई आधे घंटे का जो एक जनरल एक्सपोजर होता है स्कूल गोइंग किड्स को, वो जो बिग स्क्रीन का आप दे सकते हो, स्मॉल स्क्रीन का नहीं। उसके बाद जो है, हमारे समाज में बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि उसके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो स्कूली ढांचे में पढ़ाई में परिवर्तन है। तो वहां मुझे लगता है जो स्कूल के लिए जितना आवश्यक है, उसके अलावा कोई आधे घंटे, एक घंटे से ज्यादा हमें किशोर लोगों को भी स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं देना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अगर बच्चे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके स्वभाव में भी किसी तरह का बदलाव आ सकता है?
0: बिल्कुल। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि हम किसी घर में किसी से मिलने गए हैं और हम वहां देखते हैं जिन बच्चों से हम पहले भी मिलते थे वो हमें किस तरह ग्रीट करते थे, कैसे बातें करते थे। एक बच्चा अपनी प्रेजेंस देता है एक आम भारतीय घर में, और हम देखें कि वही बच्चा कुछ महीने बाद, अगर उसका स्क्रीन यूज बढ़ गया है, तो वो माँ बाप को किसी आगंतुक से बात करते देख के उनका मोबाइल साइड से जो चार्ज हो रहा है उसे ले जाएगा, उसमें लग जाएगा, वो हमें ग्रीट नहीं करने आएगा, वो उस अपॉर्चुनिटी का जो है यूज अपने स्क्रीन टाइम में करेगा। तो आपको उनके सोशलाइजेशन में, उनके सामाजिक व्यवहार में बदलाव दिखेगा। जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, उनके अध्यापकों को या स्कूल के अंदर जो उनके फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं या उनके दोस्तों को, उनके पार्टिसिपेशन में बदलाव दिखेगा। जो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो काम करना है, टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, पढ़ाई में जो परफॉर्मेंस है उसमें प्रभाव दिखेगा। माताएं जो बच्चों को सबसे अच्छे से समझती हैं, दादियां, वो देखेंगी कि इनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया है, ये बात बात पे तुनक मिजाजी करते हैं, ये हमारे पास तभी आते हैं जब इनको कोई चीज की आवश्यकता है, यानी कि वो जो और चीजों का समय है वो सारा उसमें ले जा रहे हैं। तो इस तरह के बदलाव जो उनको स्कूल में जो लोग मिलते हैं, माँ बाप को या उनके मित्रों को, परिवारजनों को नजर आते हैं।
1: जी, और कंसंट्रेशन पर बच्चों की कितना असर डाल सकता है जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल?
0: सबसे ज्यादा अटेंशन पे फर्क डालता है। अटेंशन ब्रेन का बड़ा बेसिक फंक्शन है, जो और हायर मेंटल फंक्शंस की अचीवमेंट के लिए आवश्यक है। जैसे कि किसी बच्चे को आपने कहा जी कि आप ये फला एक प्रोजेक्ट बना के ले आओ, अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन का यूज करता है तो किसी भी काम को कैसे मैं करूंगा, उसकी प्लानिंग करना, समय पे कर लूंगा, क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, एग्जैक्ट कैसे मैं कर पाऊंगा, इस टाइम तक कर पाऊं, मैं इतना ही बना पाऊं, तो ये जो बेसिक

0: अटेंशन के बाद जो हायर फंक्शंस होते हैं ये बच्चों के बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनका जो नतीजा हमें दैनिक जीवन में और पर्टिकुलरली एजुकेशन के जो टाइम बाउंड थिंग्स होती है उनमें दिखाई देता है।
1: बहुत से माँ बाप की ये शिकायत रहती है कि जब बच्चे से हम लोग मोबाइल लेते हैं तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा दिखाता है, तो इन हालात में माँ बाप को किस तरह से बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए?
0: हमें इस भय से बच्चे को मोबाइल नहीं देना है कि हम उसका टेंट्रम शांत करने के लिए मोबाइल दे रहे हैं कि बच्चा हम कहीं बाजार में गए, उसने किसी डिमांड के लिए थोड़ा सा टेंट्रम शो किया, पैर पटके लेट गया और हमने मोबाइल दे दिया कि भाई जनता देखेगी, या घर में कोई ऐसा कोई आया और उसने ऐसा किया हमने मोबाइल दे दिया, तो एक तो हमें चाहे वो कितना भी टेंट्रम कर ले इस पे यील्ड नहीं करना है। दूसरा, हमने स्वयं एक रोल मॉडल के रूप में बच्चे को माँ बाप को दिखाना है कि भाई हम खुद मोबाइल का एक्सेसिव प्रयोग नहीं करते हैं, घर पे आने के बाद हम घर पे पूरा समय देते हैं जिसमें हम बच्चे की सारी बातें सुनते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ, आप क्या खेले, क्या पढ़े, आपको क्या आवश्यकता है। तीसरा, एक माता पिता के तौर पे जो हम बच्चों को अपने पारंपरिक गेम्स खिला सकते हैं घर के अंदर, जो भी हम लोग खेलते थे जिनमें कोई बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, वो हम कर सकते हैं। बच्चे कई बार कहते हैं जी मैं तो बोर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मोबाइल दे ही दो मम्मी, तो हमें घर में कुछ सस्ती चीजें ऐसी ड्रॉइंग वगैरह, कुछ ऐसी बुक्स वगैरह, कुछ ऐसी चीजें ला के रखनी है जिनकी जो कीमत है वो मोबाइल के खर्चे से कम पड़ेगी और बच्चे पे उसके अच्छे प्रभाव ज्यादा आएंगे, वो हम रखें। चौथा जो है कि हम परिवार में कुछ रूल्स ऐसे सेट करें कि इस समय पे तो कोई भी स्क्रीन का ही यूज नहीं करेगा, मोबाइल को तो आप छोड़ ही दीजिए खाते समय या और चीजों के समय। तीसरा, खाने से बच्चे के मोबाइल का कभी भी एसोसिएशन नहीं कराना है, बहुत से माँ बाप उस समय उसे दे देते हैं, तो ये नहीं कराना है। बच्चों को जो उनके अल्टरनेटिव्स हैं, जो मोबाइल के अलावा और भी जो चीजें उन्हें आनंद देती हैं, वो देना है, और हमें मोबाइल को कभी भी रिवार्ड के तौर पे यूज नहीं करना। कई बार हम बच्चे से कुछ पढ़ाई का ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो हम कहते हैं भाई ये कर लेगा तो चलो फिर मैं ये विश तेरी पूरी कर दूंगा, तो उसमें हम मोबाइल को एज ए रिवार्ड शामिल ना करें। और एक जो आखिरी बात है कि हम ये चेक रखें कि बच्चा क्या प्रोग्राम देख रहा है, वो एज इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है, वो उसके लिए बहुत डेंजरस तो नहीं हो सकता, कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है, उस पे हम निगरानी रखें उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब माँ बाप उनको खाने के लिए बोलते हैं तो वो बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे में माँ बाप ही कहते हैं कि कोई बात नहीं आप टीवी देखते देखते या मोबाइल का इस्तेमाल करते करते खाना खा लो, तो ये कहां तक सही है?
0: ये बड़ा गलत है और ये ओबेसिटी का बड़ा कारण है, क्योंकि उस दौरान बच्चे को पता नहीं चलता है वो अपने कितना मुझे फूड कंजम्पशन करना है और ये है, और ये तो रिसर्च में सिद्ध हो गया है कि ये ओबेसिटी को बढ़ावा देता है, और ये वाला जो एसोसिएशन है स्क्रीन का फूड के साथ ये बड़ा स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम मोबाइल एडिक्शन की बात करें खास तौर पर बच्चों की, तो बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तो बच्चे को मोबाइल एडिक्शन ना हो इसके अलावा जो हमने बातें की, माँ बाप को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, पहले तो हम ये ध्यान रखें कि माँ बाप हम खुद लोग जागरूक हों इस बारे में कि मोबाइल के शारीरिक मानसिक और समग्र प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, बड़े इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जब तक हम दुष्प्रभावों को नहीं जानेंगे एक माता पिता के तौर पे, जो कई बार हमें नहीं पता होते इतनी गहराई से या वो हम आत्मसात नहीं किए होते हैं, तो पहला उन प्रभावों को जानना है, तो इसके बारे में जानकारी, जैसे आपका ये प्रोग्राम फैला रहा है इस तरह की जानकारी धीरे धीरे बढ़े। दूसरा उपाय है कि एक स्टेट के तौर पे हम कुछ पॉलिसीज लाएं जिनके अंदर बच्चों के अंदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस या ओवरऑल स्क्रीन को किस तरह रेस्ट्रिक्ट किया जाए, और अगर कहीं जरूरत है तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, कंटेंट को, उस पे काम करने की बहुत जरूरत है। और तीसरा, ये जानना जरूरी है कि इसके लिए कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है, मैजिक क्या किसी भी तरह की पिल नहीं है, ये जो कुछ करना है ये हमें घर से इस चीज की सबसे पहले शुरुआत करनी है। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं कि हमें एक रोल मॉडल के तौर पे बच्चों के सामने आना पड़ेगा, अगर आवश्यकता है देखने की तो को व्यूइंग करनी पड़ेगी, उनके कंटेंट पे हमें नियंत्रण करना पड़ेगा, हमें बच्चों को घर के काम सिखाने पड़ेंगे उस टाइम में, और उसमें उन्हें शाबाशी देनी पड़ेगी इस तरीके से कि वो उस चीज को एंजॉय करें और अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स भी बढ़ाएं जो जीवन में उनको मदद करें। हमें आउटडोर और इंडोर जो हमारे गेम्स हैं पारंपरिक, उनकी वापसी करानी पड़ेगी, और हमें जो है अपने घर के कुछ ऐसे कोने, ऐसे नियम, ऐसे समय सेट करने पड़ेंगे जहां पे हम बिल्कुल एब्सोल्यूट खुद भी स्क्रीन का यूज ना करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात करते हैं। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं रुचि बोल रही हूँ।
1: जी रुचि जी बोलिए।
2: सर से मेरा ये सवाल है कि सर जो बच्चे अभी एडोलेसेंस एज में एंटर कर रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं,

0: जो फोन पे गेम भी खेलते हैं, टीवी भी देखते हैं, और वो इस एज में है कि हम उनको ना तो ज्यादा डांट सकते हैं ना ही ज्यादा उनपे रोक लगा सकते हैं, तो उनको इस आदत से हम कैसे बाहर निकालें?
1: रुचि जी देखिए, जो बातें मैंने अभी पहले भी प्रोग्राम में बताई हैं उन्हीं को मैं दोहराऊंगा कि स्पेशली जो गेमिंग है, गेमिंग बच्चे को ब्रेन को इस तरह हाईजैक करता है जैसे दूसरे व्यवहारिक नशे होते हैं जैसे गैम्बलिंग टाइप। तो गेमिंग के लिए तो आपको बच्चे को बिल्कुल रोकना पड़ेगा अगर उसकी उम्र बहुत छोटी है या वो उसके लिए दिक्कत का कारण बन रहा है, उस पे तो आपको एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा अगर वो दिक्कत का सबब बन रहा है। दूसरा है बाकी स्क्रीन के यूज, वो जो मैंने आपको बताए हैं कि जब जरूरत है उसी समय दिखाए जाएं, बिग स्क्रीन्स का यूज करें ना कि स्मॉल स्क्रीन्स का, और बिग स्क्रीन्स पे जो प्रोग्राम है उनको आप रेगुलेट कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के देख सकते हैं, बच्चे के साथ समय बिताइए, उसकी और हॉबीज जो है उनका सामान घर पे ला के रखिए, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर है, उनके लिए उनको प्रेरित कीजिए, ले जाइए, घर के अंदर उनको व्यस्त रखिए, और बच्चे के एडोलिसेंट के टेंट्रम के आगे आप यील्ड ना कीजिए कि भाई अगर ये बिल्कुल ही नहीं मान रहा है तो मैंने थक हार के ये बात मान ली है। कई बार बच्चे के अंदर कुछ ऐसे व्यवहारिक लक्षण किशोरावस्था के और भी होते हैं, एंजाइटी वगैरह के, डिप्रेशन के, जिसकी वजह से वो ज्यादा कर रहा होता है, अगर वो लगे तो उस रेयर सिचुएशन में आप विशेषज्ञ का परामर्श भी ले सकते हैं।
2: चलिए रुचि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम मोबाइल एडिक्शन पर बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि किस तरह से बच्चा जो है वो मोबाइल अडिक्ट ना बने।
1: एक मोबाइल का जो एज एप्रोप्रिएट यूज है और एडिक्शन में जो थोड़ा सा फर्क करना है, एडिक्शन टर्म जो आजकल काफी प्रचलित हो गई है मोबाइल एडिक्शन, हालांकि वो भी पूरी तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने नहीं लिया है उसको, तो वो बच्चा जो अपनी खेल को, पढ़ाई को, या जो उसकी एक अपनी उम्र के हिसाब से जो चीजें उसको करनी चाहिए, अगर वो उन गतिविधियों को उस कीमत पे नेगलेक्ट करने लग जाए कि उसका सारा दिन मोबाइल को देखने में ही, भाई उसको माँ बाप से जुगाड़ने में या जहाँ पड़ा है वहां से लेने में सारी ऊर्जा अगर उसी में लग रही है और इन चीजों को नेगलेक्ट कर रहा है, तब हम उसको इतना प्रॉब्लमेटिक या गंभीर मानते हैं। उपाय यही है सर जो मैं आपको पहले बताए हैं, तीनों स्तर पे, कि परिवार के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्तर पे, फिर किशोर के अपने स्तर पे। छोटे बच्चों में तो माँ बाप की ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, किशोर बच्चे आजकल अच्छे से संवाद करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो खुद के स्तर पे खुद की को करिकुलर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज, अपनी हॉबीज, पैशंस को परस्यू करें। और अब तो भारत के बच्चे भी खेलों में काफी आगे जाने लगे हैं, और हम माता पिता के तौर पे जो मैंने बताया आपको, जो भी बातें बताई हैं कि हम एक रोल मॉडल बन के उनको दिखाएं खुद के हेल्दी स्क्रीन यूज के लिए, घर में कुछ हम ऐसे कोने बनाएं, ऐसे समय निर्धारित करें जहां पे हम स्क्रीन को रेस्ट्रिक्ट करें, हो सके तो हम बिग स्क्रीन यूज करें। इवन जो पढ़ाई के काम किशोरों में, जैसे बहुत से काम जिन पे आते हैं, जिन घरों में आज लैपटॉप या डेस्कटॉप की सुविधा है, तो वो उसको उस पे प्रोजेक्ट कर दें, या टीवी पे भी प्रोजेक्ट हो जाता है, ताकि वो उस डिवाइस को ना देखें जहां होमवर्क के साथ और सारे बहुत सारे ऐप वर्क कर सकते हैं, और उसको सुपरवाइज करें, उनकी मॉनिटरिंग करें ब्राउजिंग हिस्ट्री की। यही तरीके
2: जी डॉक्टर साहब, श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात करते हैं। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं कृष्णा बात कर रही हूँ चंडीगढ़ से।
2: जी कृष्णा जी, बोलिए, क्या जानना चाहती हैं?
3: सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में कुछ साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, तो पेरेंट्स उन चेंजेस को कैसे ऑब्जर्व करें, मतलब बच्चों में क्या चेंज है जो पेरेंट्स को बड़ी आसानी से नजर आ सकता है, और अगर वो चेंजेस नजर आ रहे हैं तो उनकी रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं?
1: देखिए, पेरेंट्स बच्चे की समस्याओं को जानने का पहला केंद्र होते हैं, दूसरा स्कूल के जो मेन अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं। बच्चों में तीन प्रकार की दिक्कतें आमतौर पे पेरेंट्स देख सकते हैं, कि उनकी नींद और खाना यदि प्रभावित हो रहे हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, और वो अकेले में ज्यादा समय बिताना चाह रहे हैं परिवार से दूर बैठ के या इस तरह अपने स्क्रीन को देखने में, और वो अपनी जो बाकी हॉबीज हैं जो वो कुछ समय कुछ महीनों पहले तक कर रहे थे, और उनको माँ बाप को लगे कि वो इन चीजों को परस्यू नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर तो ये जान छिड़कते थे, करना चाहते थे, वो अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं और पढ़ाई के अंदर उनकी गिरावट आ रही है, जो टीचर उनको फीडबैक दे रहे हैं, या तो उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि भाई ये जो ज्यादा समय स्क्रीन पे बिता रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, एक कंट्रीब्यूटिंग कॉज हो सकता है इनकी दिक्कत का।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार सर, मैं गुरप्रीत बात कर रही हूँ सर, जलंधर से।
2: जी गुरप्रीत जी, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, आप क्या जानना चाहती हैं उनसे?
4: जी सर, मेरे बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, बड़े हैं, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि आज

0: आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, बच्चों में कंपटीशन भी बहुत है, तो उनकी डिपेंडेंसी एक्चुअली उनके सराउंडिंग से कि उनको हर काम के लिए कोई क्रिएटिव है तो भी किसी ऐप का सहारा लेना है, कुछ कंपटीशन में कुछ आगे प्रोसीड करना है, तो उनकी डिपेंडेंसी ऑलरेडी उस पर बनी हुई है। तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी बढ़ना है और क्रिएटिविटी भी लेके आनी है, कम्पीट करना है, तो ऐसे एरा में हम कैसे बच्चों को दूर रख सकते हैं, उनकी मजबूरी है उनको यूज करना। सर, इस बारे में अगर कुछ हमें जैसे गाइडेंस मिल पाए।
1: यंग एडल्ट्स में या बड़े किशोरों में हमारी शैक्षणिक और जरूरतों के लिए आजकल स्क्रीन मीडिया का यूज बढ़ गया है, तो उसमें हम कोशिश करें कि हम बिग स्क्रीन पे उन चीजों को देखें, ताकि हम जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके जब वो कोई और चीज चल रही है या बोर हो गए तो हम दूसरे ऐप पे ना चले जाएं। एक तो ये है जो मोबाइल पे हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे इजीली किया जा सकता है। दूसरा, हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें मैडम, कुछ भी कर लें, उसका एक लेक्चर्स का एक हमारी क्षमता होती है उसको अटेंड करने की, उनकी भी एक ड्यूरेशन होती है। मान लो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं वीकेंड्स पे 10th, 11th, 12th में, तो वो भी टोटल सप्ताह में 6-7-8 घंटे होगी। पर अगर हम उन चीजों को मॉनिटर या ट्रैक करें कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है उससे कहीं ज्यादा जा रहा है, क्योंकि इस तरह के एप्स होते हैं जो स्क्रीन टाइम को बताते हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई हम उसके अलावा तो कई गुना ज्यादा देख रहे हैं, तो फिर हमें सजग हो जाना चाहिए कि हम क्या करें। तो उन एप्स को एक अलग फोल्डर फाइल में डाल के रखें और हम उन बच्चों को कहें कि भाई तुम इससे खुद का फीडबैक खुद ही ले सकते हो, देखो ये तो ज्यादा हो रहा है। तो फिर हम उनको इस तरह का एविडेंस देके उनको आर्ग्यू करें, परस्यू करें कि भाई आप उस चीज के लिए यूज करो, थोड़ा बड़ा मनोरंजन के लिए भी करो, पर ये टाइम जो इतना ज्यादा हो रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो उनके अंदर हम इस तरह की बात करके उनके दिमाग में हलचल डिस्क्रिपेंसी पैदा करें, जिससे वो खुद सोचने को मजबूर हो जाएं कि भाई ये तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में।
0: थैंक यू सर।
2: गुरुप्रीत जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ एप्स के जरिए पता लगाया जा सकता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या है, और यदि वो ज्यादा हो रहा है तो अपने बच्चों को कुछ इस तरह से समझाएं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम उनके सेहत पर किस तरह से बुरा असर डाल सकता है, तो बच्चे खुद ही कहेंगे

कंधों को किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन, और आज इस कार्यक्रम में हम बच्चों में मोबाइल के संतुलित और सुरक्षित उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कौन कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे पता चल सकता है कि वाकई में बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो चुकी है?
1: बच्चा घर के अंदर चुपचाप से मोबाइल लेके, माँ बाप बैठे हैं, आप गए हैं, उसको लेके खिसक जाए और आप पूछो भाई कहाँ गया देखो। ये एक ऐसा व्यवहारिक लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि भाई बच्चा मोबाइल का एडिक्ट तो नहीं हो रहा है। दूसरा, वो बाकी सब चीजें जो उसको बहुत प्यारी थी, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो क्रिकेट का डाई हार्ड फैन है और वो अब क्रिकेट का मैच भी स्किप करने लग जाए, या जो खेलने वो प्रैक्टिस में जाता था एकेडमी में उनको भी स्किप कर दे, जो उसकी पढ़ाई के अलावा प्लेजरेबल एक्टिविटीज थी उनको भी वो स्किप करे, तो हमें लगे कि भाई और उस तरफ जा रहा है, तो ये हमें लगे कि ये तो प्रॉब्लमेटिक यूज, या जिसे हम एडिक्शन का नाम दे रहे हैं कोट अनकोट, उस तरफ जा रहा है, पढ़ाई में गिरावट आ जाए, उसके बावजूद वो उस चीज को मान

0: एक बच्चा है जो क्रिकेट का डाई हार्ड फैन है और वो अब क्रिकेट का मैच भी स्किप करने लग जाए या जो खेलने वो प्रैक्टिस में जाता था एकेडमी में उनको भी स्किप कर दे, जो उसकी पढ़ाई के अलावा प्लेजरेबल एक्टिविटीज थी उनको भी वो स्किप करे, तो हमें लगे कि भाई और उस तरफ जा रहा है तो ये हमें लगे कि ये तो प्रॉब्लमेटिक यूज या जिसे हम एडिक्शन का नाम दे रहे हैं कोट अनकोट उस तरफ जा रहा है, पढ़ाई में गिरावट आ जाए, उसके बावजूद वो उस चीज को मानने को तैयार ना हो, उसका सारा समय मोबाइल को यूज करने में, जैसे सुबह उठते ही उसको चाहिए कि मैं सबसे चीज ये देख लूं और उसको इस तरह लगे कि मैं उसके बिना बच्चा अधूरा महसूस करे, चिड़चिड़ा हो जाए, उसके लिए लड़ने लगे, तो आप समझ जाइए कि वो इस तरफ जा रहा
1: है। जी, तो ऐसे हालत में माँ बाप को किसी साइकेट्रिस्ट के पास या यूं कह ले कि मनोचिकित्सक के पास कब अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए, किस तरह से उनकी सलाह लेनी चाहिए?
0: देखिए, क्योंकि इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा घर इन चीजों से प्रभावित हो चुके हैं, तो सब लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास आने की आवश्यकता नहीं है और उनकी उपलब्धता भी नहीं है। तो जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन लोगों को भी काफी इन बारे में जानकारी होती है। तो किस प्रकार से हेल्दी स्क्रीन यूज करना है, बच्चे पे कैसे लिमिट सेटिंग करनी है, कौन सी चीजें बिल्कुल प्रोहिबिट करनी है, पहले तो पेरेंट्स खुद उनके बारे में अवेयर हों, जानकार बने और फिर इनमें से किसी से भी मदद लें। और अगर उन प्रयासों से ये चीज कामयाब हो जाती है, जो बार बार मैंने आपको रिट्रेट की है, बच्चे के पर्सनल लेवल पे पेरेंट एज ए मॉडल क्या कर सकते हैं, खुद हेल्दी स्क्रीन यूज उनको डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, घर के माहौल में स्क्रीन फ्री स्पेसेस, स्क्रीन फ्री टाइम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्टरनेट हेल्दी आउटडोर इंडोर चीजें कैसे कर सकते हैं, इनको करने से अगर वो चीजें चली जाती हैं तो बहुत अच्छा है। ये सब प्रयास करने के बाद भी यदि बच्चा इन चीजों से ग्रसित रहता है तो फिर मुझे लगता है कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत है, जिसमें क्योंकि इसके लिए कोई दवा नहीं है, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी संपर्क कर सकते हो या जो भी बंदा मेंटल हेल्थ केयर के अंदर एक्सपर्ट है या काम कर रहा है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है या दूसरे प्रोफेशनल है, उनको भी आप संपर्क कर सकते हो।
1: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज बहुत से बच्चे भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी जरूर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप उनको मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से करना है उसके बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे?
0: पहली टिप यही देना चाहूंगा कि बहुत छोटे बच्चों के अंदर हमको इस चीज का एक्सपोजर बिल्कुल ही अवॉइड रखना है। उनकी जो खेल है, जो एज अप्रोप्रिएट चीजें हैं, उनको हमें ध्यान में रखते हुए एज ए पेरेंट एज ए सोसाइटी उनको एक्टिवली ध्यान में रखते हुए बच्चों को उनमें प्रयास करके इन्वॉल्व करना है आज के समय में। दूसरा ये कहूंगा कि स्कूल वाले जहां तक संभव हो सके, जब तक बच्चों को इन चीजों के एक्सपोजर से दूर रख सकते हैं, होमवर्क में, असाइनमेंट्स में, ट्यूटोरियल्स में, वो हमें कोशिश करनी है। तीसरा, जहां तक हमें हो सके, स्मॉल स्क्रीन हैंडहेल्ड स्क्रीन से आने से पहले हमें बिग स्क्रीन पे जो काम आवश्यक है वहां करने हैं। पांचवा मैं कहूंगा कि पेरेंट्स को रोल मॉडल करना है, जहां पे यूज अनिवार्य हो गया है वहां वो रोल मॉडलिंग करें और जो हमारे ट्रेडिशनल वेज थे, जो दूसरी एक्टिविटीज थी, उस तरफ डालें और हम एडवोकेसी करें इस चीज की, ताकि ये चीजें पॉलिसी लेवल पे भी आएं, रेगुलेटरी थिंग्स भी आएं, ताकि एक उस पे अंकुश भी। आज की जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर लाइफ स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स या दुनियादारी की समझ जो पिछली जनरेशन थी, हम सब कहते हैं ये बच्चे और चीजों में तो अच्छे हैं, मोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजी में, उसमें नहीं है। तो एक काम जो हम एक समाज के तौर पे कर सकते हैं, वो बच्चों को खुद रोल मॉडल बन के अपने घर के छोटे मोटे काम जो उनको भविष्य में काम आने वाले हैं, जो घर के कामों में भी मदद है, उनमें इन्वॉल्व करें। और जैसे कि भाई तरकारी काट दी, कपड़े मम्मी के साथ सुखा दिए, और उस समय हम उनको ये रियलाइज कराएंगे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, उनकी प्रेज करें, ये चीज हम करें, हमारे ट्रेडिशनल कामों में उनको लगाएं, तो ये सबसे उनको एक प्रैक्टिकल स्किल सिखाने का भी तरीका है। ये सब बातें मैं एक छोटे से अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। हमने पीजीआई में, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है हमारा पीजीआई में, उनके साथ मिलके हमारे एक छात्र ने शोध किया, तो उसके अंदर हमने स्लो लर्नर बच्चे देखे थे, जो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को हमने कुछ सेशंस दिए और फिर देखा कि क्या उन चीजों की जानकारी और ये जो तरीके जो मैंने आपको बतलाए हैं उनके आधार पे क्या बच्चों के स्क्रीन टाइम में फर्क आता है, और हमने ये पाया उस छोटे से शोध में कि फर्क आता है। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, ये हमने मतलब ट्रायल के तौर पे एक ट्रायल भी किया है इसका।
1: जी, तो इस शोध के दौरान या इस ट्रायल के दौरान बच्चों के व्यवहार में कोई पॉजिटिव उसमें चेंज आपको नजर आया उसमें?
0: हाँ जी, बच्चों के हमने व्यवहार को भी देखा था, जो बच्चों के अंदर जो इन अटेंशन, चिड़चिड़ापन जैसे जो लक्षण थे, उनके अंदर कमी पाई गई जैसे जैसे उनका स्क्रीन यूज कम।
1: जी डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: दोस्तों आज एफएम लाइफलाइन

0: कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीजीए चंडीगढ़। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमन भगत। अब आज का एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: एफएम लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम सुने हे मित्रांदे।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
4: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
5: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हे मित्रांदे।
6: सुनेहे मित्रां दे तुहाडे दिल खिचवे सुनेहे, तुहाडे दिल दा हाल ते पंजाबी गीतां दी तमाल जी। सुनेहे मित्रां दे
7: इस पंजाबी फोन इन प्रोग्राम्स द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर वालों तो सारे नु प्यार परी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और सुनाओ दोस्तों, की हाल चाल है? हमेशा वांग आज भी साडी वाई गुरु अगे ही अरदास है कि तुसी चढ़दी कला छोवो। हुण इस तो पहला कि असी तुहाडे सुनेहे अपने सुनण वालियां तक पहुंचाइए, आकाशवाणी चंडीगढ़ दा एक सुनेहा अपने प्यारे स्रोतियां दे नाल। दोस्तों, पानी रब दी बख्शी सौगात है। संसार ते रहण वाले हर प्राणी लई पानी दी एक एक बूंद बहुत कीमती है, इसलिए पानी नू जाया ना जान दियो। हुण वारी है तुहाडे सुनेहियां दी, आओ फिर सुनिए तुहाडे सुनेहे।
0: सुनेहे मित्रां दे प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो?
8: सर पूछा, नमस्कार, कमल भगत बोल रहा, मैं जलंधर तो जी।
0: जी कमल भगत जी, की हाल चाल है तुहाडा?
8: बहुत वधिया सर, तुहाडा प्रोग्राम सुन रहे सी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी
0: जी।
8: पर एदे नाल नाल ही मैं एक सुनेहा भी दियांगा, क्योंकि मैं एक्चुअली एक कोई रिकॉर्डेड सर्वे तो नहीं किया है, पर मैं कुछ यंगस्टर नु मतलब पूछा भी तुम रेडियो किन्ना कु सुनते हो
0: जी,
8: मेनू तकरीबन एक या दो बच्चे जेडे आए उन्होंने कहा भी असि जो गड्डी गुड्डी होंगी है कोई सुन ली है, लेकिन जिदा अ रेगुलर लिसनर है ना, और लिसनर नहीं मतलब है
0: जी।
8: मैं ये कह रहा भी अपने बच्चों ना कहना चाहिए भी रेडियो के बहुत अच्छे प्रोग्राम आते, जानकारी वाले प्रोग्राम आते हैं, तो वो मेरे ख्याल अंदर जरूर सुनने चाहिए बच्चों।
0: ਤੁਸੀ ਮਤਲਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ?
8: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦਾ।
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ,
8: ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ
0: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
8: ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 50-60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਵੇ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ,
0: ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੋਣ, ਤੇ

0: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे पहले सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने हाथ मिलाया और बातचीत की। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्व के बड़े आयातकों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन विदेशी घटनाक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया देने और अपनी विकास गति को बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने

0: नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 198 अंक बढ़कर 77,155 पर, जबकि निफ्टी 36 अंक की वृद्धि के साथ 24,116 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं 12:05 हुए हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे।

0: अर्जुन की ये तर्ज थी, इंदिवर की रचना आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म थी पुनर्मिलन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत मिस्टर एक्स बॉम्बे फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार

0: उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: बगल में चांद हो आई, बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: जी आनंद जी की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की रचना, आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म थी बनारसी बाबू।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गीत। शकील बदायूं के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आप सुन रहे हैं विविद भारती से कार्यक्रम जादू की महफिल।

0: सोनिक ओमी की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। आप सुन रहे थे आबरू, फिल्म का गीत जीएल रावल का लिखा।
1: आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बहारें खिली गली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

नगुनियार आरजू लखनवी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मुकेश की आवाज में अनीता फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की।

0: गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। महेंद्र कपूर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान। कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।

0: वर्मा मलिक का लिखा गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह से। ये दो गाना था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म नागिन से यादों की महफिल। ये प्रोग्राम श्रोताओ यहीं संपन्न हुआ।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और

0: एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। इस समय 1 बजा है, आइए अब हम आपको अपने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण बता दें। अब से कुछ ही देर में श्रोताओं 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। प्रादेशिक पंजाबी समाचार भी हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर। ये प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे श्रोताओं। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। विविध भारती मुंबई से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर सुना करते हैं आप हर रोज दोपहर 1:30 पर। फिर वहीं से दोपहर 2 बजे त्रिवेणी कार्यक्रम भी होगा। आकाशवाणी दिल्ली से श्रोताओं हम आपके लिए रिले किया करते हैं हिंदी में समाचार। समय इस प्रकार है दोपहर 2:15, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और फिर श्रोताओं रात 11 बजे भी। सदाबहार नगमे सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। विविध भारती के मुंबई केंद्र से दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम सखी सहेली। फिर शाम 4 बजे आज पिटारा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सेलुलाइट के सितारे सिलसिले के तहत आज आप भेंट करेंगे अभिनेता जमील खान के साथ। श्रोताओं हमारे केंद्र से NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपके लिए प्रसारित करेंगे आज शाम 5:30 पर।

आज आप अमृत बानी भी सुन पाएंगे। समय रहेगा शाम 6:30। विविध भारती के मुंबई केंद्र से आप सुना करते हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला, हर रोज शाम 7:00। हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। कुछ पंजाबी गीत भी आप सुन सकते हैं। समय रहेगा शाम 7:47। श्रोताओं, पंजाबी गीतों का कार्यक्रम सुर सांझ सुनिएगा रात 10:32 पर।

हवा में एक कार्यक्रम आप सुना करते हैं रात 8 बजे और ये कार्यक्रम हम आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले किया करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं एक प्रहसन, विवाह यंत्र। आज इस प्रहसन का पहला भाग सुनवाया जाएगा। कुछ नए फिल्मी गीत सुन सकते हैं आप चित्रलोक कार्यक्रम में रात 8:15 पर। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे और 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार हैं श्रोताओं संगीतकार सी अर्जुन और विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही रात 10 बजे रिले करेंगे आपके लिए कार्यक्रम छाया गीत। तो ये था विवरण श्रोताओं, हमारे अब से लेकर रात तक की प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। इस समय 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके फौरन बाद आप प्रादेशिक पंजाबी समाचार सुनेंगे जो हम जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। सरकार का यह फैसला अगस्त से नवम्बर के बीच आने वाले त्योहारों के मद्देनजर आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। यह निर्देश वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार का भी निर्देश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियां 31 जुलाई से 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 31 जुलाई से 28 अक्टूबर तक होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवम्बर को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि राज्य के मतदाताओं के हितों का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा पत्र सहित दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी में गुरु तेग बहादुर महिला महाविद्यालय का रुका हुआ निर्माण कार्य अगले 2 महीनों में फिर से शुरू होगा। विधानसभा के मानसून सत्र में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि इस परियोजना का 85% काम पहले ही पूरा हो चुका है। मुकदमेबाजी के चलते 5 जुलाई 2023 को काम रोक दिया गया था। अब विभाग ने इस परियोजना के लिए 3 अगस्त को 22,371,35,000 रुपए की पूर्ण संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा खाद्य विभाग ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध के मद्देनजर कुरुक्षेत्र की एक मिठाई की दुकान और एक डेयरी पर छापेमारी की। इस दौरान पनीर के कुल 3 नमूने लिए गए जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमित ने बताया कि जांच रिपोर्ट में पनीर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित धाराओं के मद्देनजर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
2: एनालॉग पनीर पूरे हरियाणा प्रदेश में बैन किया और दूध के अलावा किसी और सोर्स से पनीर बनाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसी के एवज में कार्रवाई करते हुए पनीर की सैंपलिंग पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी और आज मिठाई की दुकान और एक डेयरी पे कार्रवाई की है। निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी।
1: पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के करीब 800 बच्चों ने भाग लिया। सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी जसबीर तेवतिया ने बताया कि यह प्रतियोगिता अंडर 11 आयु वर्ग के आयोजित की जा रही है जिसमें कक्षा 3 से 5 कक्षा तक के 800 बच्चे भाग ले रहे हैं।
3: हमारी AGFI की जो अंडर 11 की टूर्नामेंट है इसमें कबड्डी, खो खो, योगा, रेसलिंग और एथलेटिक्स साथ अचल की टीमें रखी। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं यहीं से इन्हें एक लगन लगे, खेल के प्रति इनका रुझान हो और हमारे देश का और प्रदेश का नाम रोशन। इसके बाद हमारी जो स्टेट लेवल की टीम है वो सारी टीमें पानीपत जाएंगी।
1: उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर से 5,000 बच्चे खेलों में भाग लेंगे। हरियाणा की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 सितंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बीन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

आएगा। ये प्रतियोगिता हरियाणा कला परिषद के बहुकला सांस्कृतिक केंद्र में प्रातः 10 बजे आयोजित होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित भीम दल अपनी लोक कला और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रही थी लता मंगेशकर को श्रोताओं। फिल्म का नाम था एक महल हो सपनों का।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: नीचे अब सुनिए एसडी बर्मन की धुन पर अभिमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मनहर ने इसे गाया है, इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: तुरंत डिजिटल अप्रूवल 10 साल तक की अवधि आकर्षक ब्याज दरों के साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड
0: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: आठ लीची है तो कितनी साइकिलें हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 26 साल पहले मैं और मेरे बड़े भैया ने बैनर छपाई का काम शुरू किया था, तो पहली साइकिल ली थी, फिर वो चोरी हो गई, लेकिन साइकिल की चाबी अभी भी संभाल रखी है। देखिए कितना प्यार होता है श्रोताओं साइकिल से। आपकी कौन से रंग की साइकिल थी आप अगर बताना चाहें तो आप जरूर बता सकते हैं। वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें तीन पहिए की एक लकड़ी की साइकिल आती है भी, और पहले भी आया करती थी। आजकल तो वॉकर आ गए हैं, लेकिन तीन पहिए की लकड़ी की साइकिल से बच्चे चलना भी सीखते थे। न सिर्फ साइकिल चलाना बल्कि वो चलना भी सीखते थे। ऐसी कुछ यादें हैं। वैसे आजकल आप किस तरह की साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल बचपन की आंगनवाड़ी होती है। साइकिल सीखना चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन में ट्राई साइकिल इनके पास थी, उस वक्त वो कांच पर गिर गए थे, अंगूठा कट गया था, तीन टाके आए थे, आज भी निशान है। तो भाई ऐसी भी बातें हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारा नमस्कार, साइकिल बचपन में हमारे लिए केवल एक खेलने का जरिया थी, वही साइकिल आज रोजी रोटी और अपने परिवार चलाने का जरिया बन गई है। जी हाँ, साइकिल से चलना तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रोताओं क्या आप भी साइकिल से आजकल चलते हैं या फिर चलाना आपको अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है कि साइकिल आज भी अनगिनत यादों का प्रतीक है, जहां गति से ज्यादा दिशा, दिखावे से ज्यादा सादगी और गिरने की डर से ज्यादा उठकर दौड़ने का जुनून मायने रखता है। पिता के हाथों से मिली वो पहली साइकिल दरअसल जीवन की हर चुनौती से मुस्कुराकर पार पाने का पहला पाठ थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जब स्कूल में थी तो किराए की साइकिल लेकर खूब चलाई, लेकिन अपनी साइकिल नहीं ले पाई। इस बात का मलाल मुझे है। अब इस उम्र में थोड़ा डर लगता है कि कहीं हाथ पैर न टूट जाए, लेकिन सुबह योगा में साइकिल जरूर चलाती हूँ और एकदम फिट रहती हूँ। जहाँ हम भी फिट रहते हैं और पर्यावरण भी इससे बहुत प्रभावित होता है। श्रोताओ ये कौन जनाब है साइकिल पर?

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से बस थोड़ी ही देर में आप हमारे मुंबई केंद्र से सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर। लेकिन उससे पहले कुछ संदेश।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50

यूं कहां चली हो 50 की रफ्तार से, दिल वाला कोई कूद न जाए चलती मोटर कार से। अरे बंधन के यूं कहां चली हो 50 की रफ्तार से, दिल वाला कोई कूद

0: जैसा देखे ना जा मुझको देख मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। जैसा देखे ना जा मुझको देख मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। होए होए मरते मरते लिख जाऊंगा गवर्नमेंट को लेटर जी
1: ये गीत फिल्म बाहर फिर भी आएंगी इस फिल्म से था, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज थी और जॉनी वॉकर पर फिल्म है ये गीत था। श्रोताओ अजीज कश्मीरी के बोल थे, सुनली सफर के बहाने याद आ गई, साइकिल कभी नहीं होती पुरानी, भविष्य इसका उज्जवल, रंग बिरंगी रूप इसके आधुनिकता से, चपल चंचल सेहत को संवार कर प्रदूषण को रोके बन गई है सदा सफल, बचपन में सिखाती जवानी में हंसाती, आगे चलकर काम में आती, अदृश्य काल चक्र को यादों का अनुपम कारवा बनाती। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, आज साइकिल की सवारी की जाएगी और साइकिल की सवारी सबसे सस्ती और स्वास्थ्यवर्धक है, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आजकल कई तरह की साइकिलें आ रही हैं, सस्ती महंगी और रंग बिरंगी, और गीत भी उन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब से होश संभाला तब से घर में साइकिल को देखता आ रहा हूँ, पिताजी साइकिल से ही ड्यूटी जाया करते थे, मेरी उम्र 10 वर्ष की थी तो मेरे बड़े भाइयों की शादी एक साथ हुई तो उन्हें शादी में 2 साइकिल मिली, बस मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, तब से गिरते पड़ते कितनी बार चोट खाई और अंततः साइकिल सीख ही गया। साइकिल चलाने का इतना जुनून सवार था कि 10वीं कक्षा में अपने दोस्त को बिठाकर पूरी दिल्ली को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला एकमात्र रिंग रोड साइकिल दौड़ाकर मात्र 3 घंटे में नाप दिया। तो इन्होंने अपनी बातें लिखी है। और साइकिल जब हम लोग चलाते थे श्रोताओ तो कई बार ऐसा होता था कि अपने दोस्तों को लिए बगैर साइकिल नहीं चलाते थे, और फिर घंटी बजाना, उन्हें बुलाना और साथ में जाना, ऐसी भी कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कुछ अभिनेता और अभिनेत्री जो दिखाए जाते हैं पर्दे पर साइकिल चलाते हुए, इनमें से कौन आपको अच्छे लगते हैं, यानी साइकिल चलाते हुए कौन से अभिनेता या अभिनेत्री आपको बड़े स्टाइलिश लगते हैं? ये अजब सी स्टाइल है धर्मेंद्र जी की, ऐसी साइकिल आपने चलाई है क्या?

बेहुजब तरीके से धर्मेंद्र जी ने साइकिल चलाई है श्रोताओं, और ऐसी साइकिल यानी उल्टी साइकिल बहुत सारे लोग चलाया करते थे, तो क्या आपने भी कभी चलाई है? तो आप जरूर लिखें। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म औरत का जो गीत हमने आपको सुनाया नाजिम और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। एक हमारी श्रोता लिखती है कि हाँ, मैंने भी कैची साइकिल चलाई है। और एक और श्रोता लिखती है, साइकिल में क्या चीज थी बचपन में, क्या आज भी साइकिल को लेकर उतनी ही पॉजिटिव हूँ जितना अपने बचपन में थी। जब पहली बार साइकिल पर बैठे थे तो लगता था कि साइकिल ही हवाई जहाज है और इस पर बैठकर चाहे जहां तक उड़ सकते हैं। वो चैन के दिन जब साइकिल से सारा शहर नाप लेते थे, आज भी मेरे पास एक गुलाबी साइकिल है। साइकिल हमारी दोस्त ही नहीं, ये तो पर्यावरण की भी सच्ची साथी है। और साइकिल चलाइए और अपनी और प्रकृति की सेहत बनाइए। एक और श्रोता लिखती है कि कुछ चीजें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में और तहजीब से रख दी जाती हैं। मेरी पहली साइकिल भी कुछ ऐसी ही थी, उसने मुझे रास्तों से ज्यादा जिंदगी का संतुलन सिखाया था। गिरना भी उसी ने सिखाया और उठकर फिर चलना पढ़ना भी। और पापा के हाथ पीछे पापा का हाथ था, सामने खुली हुई गली। और कुछ उन्होंने अपनी बात भी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ताऊ दादा यदि सब ने नौकरी अधिकतर साइकिल के द्वारा की है और जैसे हुआ उपरांत भी उपयोग किया है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तक साइकिल से जाके पढ़ाई हम लोगों ने की और बाइक भी थी। साइकिल से घूमना जाना आज भी जारी है और अब पापा नहीं चला रहे, फिर भी हम लोग उन्हें बताते हैं साइकिल जा रहे हैं, वो ऐसे सेफ समझते हैं। यानी कि इन्होंने कहा होगा कि शायद हम साइकिल से जा रहे हैं तो वो सेफ समझते हैं, और अच्छी बात है ये।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: नाना जी ने दी थी, फिर भाई हुआ तो बाबा ने 3 चक्के वाली साइकिल खरीदी. अब नवासे के जमाने में चलना क्या सीखेंगे, तो साइकिल खरीदी, अब तो स्कूटर की मांग है.
2: सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल,

0: हिम्मत अल्लाह हिम्मत वाहगुरु हिम्मत है भगवान मरता जा मित्रा करता करता जा मित्रा किसी से झुकाता चल मित्रा जग पर चाहता जा मित्रा जीवन
1: मनोज कुमार शोर फिल्म में 7 दिन तक साइकिल चलाते हैं श्रोताओं ऐसा नजर आता है ऐसा दिखाया गया है। आप सुन रहे थे ये गीत मन्ना डे महेंद्र कपूर और श्यामा चित्र की आवाज में। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी वाली 3 पहिए की साइकिल पर हम तो 2 बहनों ने चलाना सीखा पर अब वो नहीं दिखती। मेरी पहली साइकिल काले रंग की थी स्कूल जाते थे भीगते पानी में और धूप में कोहरे में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चे के लिए लकड़ी की तिपहिया साइकिल को हिंदी में गडूला और मराठी में पंगुल गाड़ी कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जॉनी वॉकर जो गीत हमने आपको सुनवाया था इन्होंने लिखा है कि जॉनी वॉकर साइकिल पर नजर आते हैं और ये मुकाबला करते हैं कलकत्ता की ट्राम से। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैंने साइकिल चलाना सीखने की बहुत कोशिश की पर सीख नहीं पाई। पार्क में जिम में है और वहां मैं जाती हूँ और चलाती हूँ साइकिल। आपको ये अदाकार और फिल्म बतानी है और संगीतकार बतानी है।

श्रोता ऐसा शायद ही कोई हो जो साइकिल चलाते चलाते कुछ गुनगुनाता ना हो, और ये आदत शायद वहीं से पड़ती है। आज भी जब कभी हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गुनगुनाते हैं। आप कौन सा गीत गुनगुनाते थे जब साइकिल चलाते थे?

मेरे सपने फिल्म का गीत था देवानंद और मुमताज पर फिल्माया गया। नीरज के बोल थे सचिन देव पर उनकी तर्ज थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ और साइकिल से जो है सुबह निकलता हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसा इनका लिखना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूको पार्क जाता हूँ, फिर वहाँ मॉर्निंग वॉक कर साइकिल से ही वापस लौटता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है जिससे आपने तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल से लौटते वक्त साइकिल पर तीन तीन दोस्त बैठ कर आते थे, अन्य दोस्तों के साथ रेसिंग भी करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लीडर में दिलीप कुमार ने जो उल्टी साइकिल दौड़ाई है उसकी बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कॉलेज टूर पर इंदौर गए, 1989 की यादें ताजा हुई।

सुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, सहरा बानो नजर आती है। श्रोताओं, आपके तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके तमाम कमेंट्स के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग सुनीला सफर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें सिर दर्द की। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वो दर्द जो कि हमारे सिर के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग कारणों से होता है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम, ठंड, एसिडिटी, मौसम के बदलने का असर सिर दर्द के रूप में सामने आता है। इसके कारण कई बार हमें बिल्कुल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं और उसी के अनुसार उनका इलाज भी होता है, पर आम तौर पर सिर दर्द के दौरान सीधा सा उपाय पेय पदार्थों का सेवन और स्क्रीन से दूरी ही है। बस आंखें बंद करके लेट जाइए और हो सके तो किसी से सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश भी करवा सकते हैं, जो कि आपके सिर दर्द से आपको राहत दिलाने में कारगर होगा।

झगड़ा या बिजनेस का हो झगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चमपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चमपी में बड़े

सिरदर्द के स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बात तो हमने की, लेकिन कुछ सिरदर्द अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ आदतें और कुछ लोग भी कई बार सिरदर्द की श्रेणी में आते हैं। सिरदर्द कहलाने वाली आदतों में शुमार हैं चुगली, बेवजह के सवाल जवाब या नकारात्मकता का पिटारा, जो कई बार हमें सामान्य नहीं रहने देता। वैसे ही कुछ लोगों की फितरत भी इस तरह की होती है जो हमें कई बार सिरदर्द की हद तक ही परेशान कर देती है। इस तरह के सिरदर्द की खासियत या कहें

मुसीबत ये होती है कि इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो कोई चंपी काम आती है और ना ही कोई दवा। इनसे बचने का सीधा सा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को देखते ही हो जाइए 9-2-11, वरना आप भी यही कहेंगे।

जैसे कुछ आदतें और लोग सिरदर्द होते हैं, उसी तरह से कई काम भी हमें सिरदर्द ही लगते हैं। जैसे बैंक, ऑफिस या स्कूल में तरह तरह के कामों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना, किसी के बड़े से खत का जवाब देना, किसी के इत्मीनान से कहे जा रहे वॉइस मैसेज को सुनना और भी न जाने क्या क्या। सबके अपने अपने अलग सिरदर्द होते हैं, हो भी क्यों ना, सबके सिर अलग अलग हैं और उनके दर्द झेलने की क्षमता भी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिरदर्द चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या हो किसी आदत, काम या व्यक्ति संबंधी, उससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए जीवन उतना ही आनंदपूर्ण हो जाता है। जीवन में आनंद बढ़ाने और हर प्रकार के सिरदर्द को कम करने का एक कारगर उपाय है संगीत। अच्छा संगीत आपको स्वस्थ और आनंदमय रखता है। जब दिल

हमारी यही है कामना कि आपको जीवन भर न करना पड़े किसी भी तरह के सिर दर्द का सामना। और इसी के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक

0: पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में

0: आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती है, साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले दो दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया।

0: साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले दो दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूदा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सचिन देवबर्मन की तर्ज थी शैलेंद्र की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत था हसरत जयपुरी के बोल, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: करीना कपूर और आशा भोसले का गाया ये दुगाना आपने सुना गुमराह फिल्म से। सहेली धानवी के बोलों को शुरू में ढाला रवि ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: शीतला भरने।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार, मैं संगीता श्रीवास्तव के साथ।

हसन जयपुरी के बोलों को सुनने ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म थी प्यार ही प्यार। फिल्म पेंगेस्ट किशोर कुमार की आवाज़।

है हसीनों को सलामी, गुस्सा कीजिए जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

जैसा भी है अब है तुम्हारा, टूटा फूटा दिल ये हमारा। जैसा भी है अब है तुम्हारा, इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा।

बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज गीतों का नाम है जो सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म अनजाना से, और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
2: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप
1: सखी सहेली
2: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: मंजरी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: और बताओ कैसी हो?
3: बिल्कुल ठीक हूँ।
2: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर मिलना हो रहा है।
3: ऐसे तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मिलना जो होता है ना वो यहाँ पे ही होता है।
2: और साथ में जब बात करना होता है, विषय बताने होते हैं, तो भी बड़ा मजा आता है। जैसे कि भाई देखो, आज का जो विषय है मुहावरों की दुनिया, तो मुंह में पानी आना, तो इस पर भाई आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी सी बातें लिखिए कि
3: आपको क्या देख के मुंह में पानी आता है।
2: तो मेरे मुंह की बात छीन ली है ना। और देखो, हल्की फुल्की बातें में हम करेंगे मुफ्त का लालच,
3: यानी कि एक के साथ अगर मैं एक फ्री मिल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ले लेते हैं।
2: ये सब चीजें देखो, कपड़े पहनने, वस्तुओं से लेकर के कुछ खाने
3: पीने पर भी होता है।
2: बिल्कुल है ना। तो बस अपनी अपनी यादें ताजा कीजिए। और सखी विशेष में क्या लेकर के आई हूँ आरती?
3: आज हम सखी विशेष में हम बात करेंगे छाया नंजप्पा जी के बारे में, जो कि संस्थापक है नेक्टर फ्रेश की, उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आज हम बात करेंगे दैनिक आहार और पोषण, हमारी थाली में पोषण कितना होता है और जो चीजें हमारे नुकसान करने वाली हैं वो कितनी होती है। हाँ। इसके बारे में हम बात करेंगे।
2: बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हमारे हम जो खाना खा रहे हैं दैनिक रूप से, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए, है ना।
3: बिल्कुल।
2: तो ताजा मासी इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम भाई चलेंगे गीत की।
3: संगीत के बिना तो सब बातें अधूरी हैं।

0: हूँ तो भाई आरती तेरे कारण तेरे कारण, ये जो भाई ये चीजें होती है ना ये घरों में बहुत होती है कि तुम्हारे कारण
1: तुम्हारी वजह से हुआ जो
0: तुम्हारी वजह से जो भी हुआ है किचन में आप ये बनाए वो बनाए ये सब चलता रहता है। और देखो जब हमारी जिंदगी में रोज ही ये सब चीजें होती रहती है कि भाई क्या बनाए क्या खाए, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी थाली में कैसा खाना हो जो विटामिन प्रोटीन मिनरल से भरा हुआ हो, यानी कि दैनिक आहार और जो पोषण है उसमें हमें एक समय में नाश्ते में अच्छा खासा मिल जाए, फिर लंच में मिल जाए, जो हम दोपहर का भोजन जिसे कहते हैं उसमें अच्छा खाना हो, और रात का खाना, तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खासकर हम गृहिणियों को और तुमको भी याद रखना पड़ता है ना कि चटपटा कितना खाना है, सादा कितना खाना है।
1: चटपटा मुझे ध्यान रखना है,
0: चटपटा तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम याद रखो, है ना। और अक्सर खाना तो पेट भरने के लिए खाते हैं ना, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा भोजन हमारे शरीर को सही पोषण भी दे रहा है कि नहीं, है ना। आप पेट भरने के लिए ना खाएं, जीने के लिए भी खाकर सोचें, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और क्या कहते
1: और है? कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का निवास होता है और स्वस्थ शरीर की शुरुआत होती है एक संतुलित और पौष्टिक आहार से। और पोषण का अर्थ ही होता है कि भोजन के माध्यम से शरीर को आवश्यक तत्व मिलने जितने भी हो सके, और जिससे कि हमें ऊर्जा मिल सके और शरीर का विकास हो, हम तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि हमारा जो रोज का भोजन होता है उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने अभी कहा ही था कि प्रोटीन विटामिन से तो कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा देता है, तो वो भी होना चाहिए। और प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि और उत्कों की देखभाल करने में मदद करता है, और वसा जो ऊर्जा का एक स्रोत है और शरीर के लिए वो बहुत आवश्यक भी है, तो विटामिन और खनिज जो शरीर के सामान्य कार्यों और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो अपने खाने में उन चीजों को देखें। और जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं, जो भी अनाज है, तो आप चाहे तो एक चार्ट बना करके किचन में चिपका लीजिए कि भाई इसमें ये चीज पाया जाता है, तो हम बदल बदल की चीज बनाएंगे।
1: बिल्कुल, जितनी रंग बिरंगी आपकी थाली होगी ना हमारी, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्योंकि वो सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि पौष्टिक और विविध भोजन जरूरी होता है कि एक ही तरीके का खाना खाकर हम वैसे भी उब जाते हैं, तो हमारी थाली जितनी ज्यादा रंग बिरंगी होगी उतना ही हमें खाने में अच्छा लगेगा। और जिसमें की होनी चाहिए क्या क्या चीजें, हरी सब्जियां, मौसमी फल होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, अनाज और बहुत सी पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ है उनको अपनी दिनचर्या का हमें हिस्सा बनाना चाहिए। खासकर दालें तो बहुत जरूरी

0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाहे बच्चों चाहे बड़े हो, सबको दाल तो खानी ही चाहिए।
0: बिल्कुल, और सुबह का नाश्ता भी बहुत जरूरी होता है, वो भी समय से करने के लिए, क्योंकि रात भर हम जो रात में खाकर सोते हैं सुबह तक तो वो हजम हो जाता है, लेकिन नाश्ता ही देर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो उस समय आप नाश्ता एक पौष्टिक लीजिए, पोहा उपमा ये सब चीजें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, चीला वगैरह में मूंग का चीला ले सकते हैं, और दोपहर के भोजन में अनाज दाल जैसा तुमने कहा है, और दही के साथ साथ प्रोटीन और अन्य सब्जियां भी शामिल करें, और शाम को जरूरत से ज्यादा तले भुने या अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय पौष्टिक विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खाना खा के रात को सोना भी है, तो जब हम तेल वाला मिर्च मसाले का खाएंगे तो हमें तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
1: और वैसे भी शाम के समय थोड़ा सा हमारी पाचन क्रिया होती है थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, और जैसे सैलेड हम खा सकते, सलाद खा सकते हैं, है ना, या कोई हरी या सब्जी कोई अपनी हमने हरी बनाई हरी सब्जी बना रखी तो उसको खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके की चीजें हमें खानी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और इसके अलावा हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत जरूरी है, तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है।
0: ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 गिलास पानी हम जरूर पिए, कि जिससे आपके अंदर शरीर की जो गंदगी है वो बाहर
1: निकले, कर पानी पीजिए, और जरूरी नहीं कि आप एकदम से बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि फिर हमारे शरीर को उसको भी करने में बहुत टाइम लगेगा, परेशानी होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पीजिए,
0: और पानी जब भी पिए ना तो बैठ कर पिए, धीरे धीरे पिए। तो फिलहाल तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

किनारे को क्यों चूमते हैं?

0: सुनी तो अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है आरती सखी सहेली। तो हमारे साथी जो लगे उन्होंने क्या क्या संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: बहुत कुछ लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वही शरीर को स्वस्थ बनाता है। कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत अपनी जो वैसी चाय होती है उससे करती हूँ और दिन में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और रात में सब्जी डालकर ज्वार की दलिया खाती हूँ और कभी कभार तीज त्योहार पर पूरी सब्जी खा लेती हूँ।
0: क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दैनिक आहार और पोषण, रोजमर्रा के जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषण होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारे सेहत को एक अच्छी गति प्रदान करता है। उसमें पोषण हम किस तरीके से ला सकते हैं? दैनिक आहार में पोषण लाने के लिए हर तरीके की चीज खाएं, चावल रोटी, लेकिन कहते हैं चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना है। और अपने आहार में अनाज हर प्रकार की दालें राजमा चना मूंग इस तरह की चीजें आप शामिल कर सकते हैं। दूध दही ले और जो मतलब जिस तरह के निरामिष या शामिष भोजन वैसे करते हैं तो वो करें आप, और जंक फूड और तली चीजों से दूर रहें और घर में ही पोषक तत्वों से भरा स्वादिष्ट खाना जो बनता है वो आप खा सकते हैं। मूंग का दाल का चीला है और सिस्टम भी आपका सही रहता है, सेहत सही रहती है। और बहुत से खाने भी आप खोज सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए, सूजी का उपमा वगैरह चीला ये सब खा सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: हमारे एक साथी जो कहते हैं कि दैनिक आहार और पोषण में भोजन में रंग बिरंगी सब्जियां और फल आप खा सकते हैं, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए और बहुत ज्यादा चीनी और मैदे वाली चीजों से दूरी बनाकर रखिए और खाने को स्वाद के लिए नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार खाइए।
0: बिल्कुल। और जैसे कि दैनिक आहार और पोषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य ऊर्जा स्तर और मानसिक विकास का मुख्य आधार है, आहार है, और ये वो भोजन है और पेय है जिसे हम नियमित रूप से सेवन करते हैं। पोषण जो है ये शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। और भाई इसकी जानकारी हम एक दूसरे से ले सकते हैं, घर में जो परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं ना आरती, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी बताते हैं कि देखो ये चीज खाओ, गर्मी में ऐसी चीजें खाओ कि आपका तन में शीतलता बनी रहे, और जैसे कि बारिश के समय है तो इस तरह की कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें खाओ कि आपको थोड़ी सी गर्मी भी रहे, और सर्दी में तो कहा ही जाता है कि गर्म पदार्थ खाने, तो उन सब चीजों का आप बड़े बुजुर्गों से भी आप सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं, आप सोशल मीडिया या आप उससे भी जानकारी नेट से भी इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो
1: बिल्कुल। और वैसे भी अगर हम बाहर की चीजें खाते हैं, जैसे कि अपने घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया हुआ जब तेल भी उसमें प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें बन चुकी होती हैं और लगातार वो तेल खोल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाने ही वाला है वैसे भी। और हम जो भी चीजें बाहर की खाते हैं उसमें कितना तेल, कितना नमक तेज है या कितना तेल बहुत ज्यादा है या कितना मिर्ची तेज है, मतलब वो जो चीजें हैं मसाले हैं वो कौन से हिसाब से डाले गए वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि हम बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम खाएं, अपने घर पे ही आप अच्छा ताजा भोजन खाएं और सुपाच्य अच्छा हो जो हल्का हो जो पचने में आसान हो ऐसा भोजन खाना चाहिए।
0: बिल्कुल। और खुला जब भी खाना किचन में बने आप बना के रखते हैं तो उसको ढककर रखें, कभी भी खुला मत रखें, और हो सके तो आप बिल्कुल बासी खाने को मतलब ना ही खाएं तो अच्छा है, ताजा ही भोजन के जैसा तुमने कहा ही है। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि भाई आप भी ताजा खाना खाइए, हम बना रहे हैं नहीं कि अभी नहीं खाएंगे तभी नहीं खाएंगे, बच्चे करते ना अक्सर ऐसा कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, अभी पेट भरा हुआ या कोई

0: मान्य कर देंगे कि अब मोबाइल छोड़ के उन्हें खाना खाने के लिए बोल दिया गया है तो इस तरह की चीजें ध्यान रख के, और साथ में जब खाना खाने के लिए आप लोग बैठते हैं, खाना खाने सब लोग, हम सभी लोग बैठते हैं, तो उस समय इन सब चीजों से को अपने आप से दूर कर दें, मोबाइल वगैरह की, सिर्फ खाने पर आप ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं,
1: वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो जब अपने हाथों से खाना अपने मुंह तक पहुंचाते हैं, वो जो खाना होता है ना, वो एक अलग सा रिश्ता बनाता है, हमारे हाथों से हमारे मुंह तक आता है खाना, तो उसकी वजह से ना हमारे शरीर पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: अच्छा, जो बनाता भी है ना, एक घंटे दो घंटे करके मेहनत करके जो हमारी सखियां बहनें सब बनाते हैं हम लोग, तो उनकी तारीफ करने के लिए भी आप सोचिए ना कि अब स्वाद से खाएंगे तभी तो आप तारीफ कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान मोबाइल में लगा है या टीवी में लगा है तो आप तो खाने का स्वाद ही नहीं ले रहे हैं, ना, तो वो चीज भी बहुत ध्यान रखना है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत मतलब हर्बल चाय से करती हूँ, तो ये देखो ये चीज बहुत अच्छी बात है, और तुमने भी इस को बताया ही था आगे इसी संदेश को, तो बहुत अच्छी सी बात है कि इस तरह ध्यान रखना चाहिए अपना। और हम ध्यान रख लेते हैं बातों के बीच में
1: एक गीत का।

0: तो भाई देखो आरती, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो भाई आज कौन सी सखी विशेष की तुम बात करने वाली हो?
1: मैं हम बात करने वाले हैं आज छाया नंजप्पा जी की।
0: जी,
1: तो छाया नंजप्पा राजप्पा की, जो कि भारत की जानी मानी महिला उद्यमी में से शामिल हैं, और इनका जन्म हुआ था दक्षिण कूर्ग नलकरी में। उनका बचपन अपेक्षाकृत पारंपरिक और सुरक्षित वातावरण में बीता था। उन्होंने मैसूर में अपनी शिक्षा पूरी की, हालांकि उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो आगे बहुत समय तक जारी नहीं रह सकी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया।
0: छाया के जीवन में एक कठिन दौर तब आया जब उनके पिता का निधन हुआ और बाद में उनका विवाह भी असफल रहा, और इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं था, बल्कि अपने गृह क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी था।

0: छाया के जीवन में एक कठिन दौर तब आया जब उनके पिता का निधन हुआ और बाद में उनका विवाह भी असफल रहा और इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया और उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं था बल्कि अपने गृह क्षेत्र के लोगों विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी था।
1: बिल्कुल, छाया ने जब अपनी शुरुआत करी थी अपने उद्यम की तो उनके पास ना तो पारिवारिक व्यवसाय की पृष्ठभूमि थी और ना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कोई लंबा अनुभव। उन्होंने शहद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CBRTI पुणे में प्रशिक्षण लिया। इसी दौरान उन्हें मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी भी मिली
0: और उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का व्यवसाय विकसित किया। उनके व्यवसाय की शुरुआत विशेष रूप से शहद और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों से हुई और कंपनी की शुरुआत में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIC समर्थित ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित किया गया।
1: उनकी कंपनी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बनाना है, खाद्य उत्पाद बनाना है। बाद में कंपनी ने अपने उत्पादों का विस्तार किया जिसमें शहद, जैम, सॉस, चिया सीड्स, प्राकृतिक सिरका, सेब का सिरका, कॉफी और मसालों जैसे उत्पाद हैं। छाया के उद्यम में का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ग्रामीण रोजगार और छोटे किसानों और सभी समुदायों को उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करके आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने वन समुदायों से प्राप्त शहद की खरीद और उसे बाजार तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। उनका मॉडल किसानों, शहद संग्रह करने वाले समुदायों, खाद्य उपयोग और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने पर केंद्रित रहा है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कम शिक्षित और कम प्रशिक्षित लोगों को काम के दौरान प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी जो उद्यमिता है उसको सामाजिक उद्यमिता का उदाहरण भी माना जाता है। उनकी कंपनी को वी कनेक्ट इंटरनेशनल के उनको के वुमेन ओन्ड लोगों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला ब्रांड बताया गया है। ये पहचान महिला उद्यमिता और महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने का के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने धीरे धीरे बड़े होटल समूहों, खुदरा संस्थानों और आयुर्वेद और फार्मा क्षेत्र के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाई और उनकी कंपनी ने केवल कच्चे शहद की बिक्री तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया और छाया ने भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले पैक किए गए शहद और अन्य खाद्य उत्पादों को स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
1: बिल्कुल, और छाया नंजप्पा नेशनल बी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी रही हैं और KVIC के हनी मिशन की नेशनल लेवल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी रही हैं। वो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस वीमेन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारत की कंट्री प्रेसिडेंट और कर्नाटक की स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी सूचीबद्ध है।
0: और देखो, इनके बहुत सारे काम है, इन्होंने मतलब इस तरह से जो किया है वो सबके लिए एक मिसाल है और हम लोग इनके बारे में और भी बातें करेंगे आरती, लेकिन अभी एक समय हो रहा है, धीरे धीरे अंतराल का समय हो रहा है तो हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर हम इनके बारे में आगे बातें करेंगे।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: पुण्य की दिशा में भी पहल की है। और नमन नामक पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी कारीगरों की कला और सांस्कृतिक विरासत को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। छाय नंजप्पा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रियदर्शनी अवार्ड, सार्थक नारी अवार्ड के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था।
1: क्या बात है। और हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि छाया नंजप्पा ने मैसूर कर्नाटक में शहद प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की। विदेश में इस प्रकार का प्लांट स्थापित करने वाली पहली महिला उद्यमी बनी। कंपनी ने केवल शुद्ध शहद से शुरुआत की, लेकिन बाद में किसानों की सहायता के लिए जैम, सॉस, कॉफी, चिया सीड्स जैसे 35 से अधिक प्राकृतिक खाद्य उत्पादों का विस्तार किया। नेक्टर फ्रेश देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बिना कृत्रिम रंगों और प्रिजर्वेटिव के जैम का निर्माण किया। बहुत सुंदर सी बात है ये।
0: बिल्कुल। और साथ ही छाया नंजप्पा जी ने पहली बार शहद और जैम के लिए पॉलीप्रोपलाइन ब्लिस्टर चिपलेट्स और तकनीक का उपयोग अन्य ब्रांड्स के रूप में किया था। अपने इनके ब्रांड ने भारत में कई विदेशी और 20 साल पुराने स्थापित ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया था। आज इनके उत्पाद भारत के प्रमुख प्रीमियम होटल में भी सप्लाई किए जाते हैं। ये हमारा एक संदेश मिला है हमें
1: श्रोता ने। और आरती मेरे साथी और लिखते हैं कि हर बार जगह बदलने पर लाखों का नुकसान होता था। इसके अलावा उपकरणों की टूट फूट के कारण कुशल कर्मचारी कम हो जाते थे और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता था। इसलिए हमेशा आशावादी रहने वाली छाया कहती हैं, हर बार जब हम नए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनके साथ मेरे संबंध और भी मजबूत होते जाते हैं। बहुत सही बात है। जब हम इस तरह से किसी को भी सिखाना चाहते हैं ना, तो वो एक टीम बन जाती है और टीम के अंदर एक आपसी जो सद्भाव होता है, एकता होती है, अनुशासन होता है और आप सबका सहयोग होता है, तो उससे ही वो काम अच्छा निखर के आता है।
0: बिल्कुल। और इस समय हमें अपने सखियों को अपनी सखाओं के साथ थोड़ा सहयोग करना चाहिए, उन्हें गीत सुनाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग बात कर रहे थे छाया जी के बारे में। तो क्या बातें चल रही थी आरती?
1: बिल्कुल, छाया नंजप्पा विभिन्न संस्थाओं और मंचों से भी जुड़ी रही हैं। वो नेशनल बी बोर्ड से जुड़ी हैं और हनी मिशन की राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार भी हैं, और जैसे कि हमने बताया था अभी, और उन्हें बहुत ही अलग अलग जगहों पे पूरा उन्होंने उसका वक्ता के रूप में भी भाग लिया है, और साथ ही ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के विकास के साथ छाया ने पारंपरिक कला और कारीगरों को बाजार से

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भी आरती, अब हम लोग किस विषय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं?
4: अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मुफ्त की ओर।
3: अच्छा, सबसे प्यारा विषय लगता है तुम्हारा
4: मुफ्त की ओर। कई बार होता है ना, हम लोग कभी कभी लालच में भी जाते हैं। अच्छा, सेल लगी है, अच्छा मुफ्त मिल रहा है सामान, चलो चलो ले लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
3: ओवर बजट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लेते चले जाते हैं सामान, ये नहीं सोचते कि हमारे घर में स्टोर जमा हो जाएगा, अलमारी भर जाएगी, है ना।
4: इससे बस घर भी तो घर में भी सब सामान इतना ज्यादा जमा हो जाता है ना, जिसको इसका प्रयोग नहीं, हमारे पास जब उसका हमें उपयोग नहीं करना है तो हम जबरदस्ती में उसको भरते ही तो है। और दूसरी चीज है, कभी कभी खाने में जब हम ये काम करते हैं ना कि इसके साथ में ये मुफ्त है या ये इतना खा सकते हैं, ये थाली मुफ्त है या बड़ी थाली लेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।
3: कई बार क्या होता है कि हम उसके चक्कर में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं, फिर अंत में होता है कि भाई इसको पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो मुफ्त का लालच जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही होता है ना कि मुफ्त मिले तो बुरा क्या है, यही सोचकर कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। और मुफ्त शब्द सुनते ही मन में बड़ा उत्साह से जाग उठता है और हम बिना सोचे समझे उस वस्तु या अवसर को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही मुफ्त का लालच कई बार नुकसान का कारण बन जाता है।
4: बिल्कुल, बाजार में जो आकर्षक ऑफर रहते हैं, फ्री गिफ्ट रहते हैं, एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएं रहती है, वो बहुत ज्यादा लुभावनी लगती है और कई बार हम जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ मुफ्त मिल रहा होता है साथ में, और बाद में पता चलता है कि जिस चीज को पाने के लिए इतना खर्च किया उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में भी मुफ्त के लालच से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय नकली इनाम, आकर्षक ऑफर और संदिग्ध संदेश लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मुफ्त चीज के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई और अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए।
3: बिल्कुल, और कई बार हम कहीं दुकान पर लेने जाते हैं आरती, तो वहां पर एक दिखाएंगे कि आप स्क्रैच कार्ड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रैच कर दीजिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो भाई वो चीज कभी ना करें, लालच में ना पड़े। और कहा भी गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुफ्त मिलने वाली वस्तु वास्तव में लाभदायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम लालच के बजाय विवेक से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मुफ्त का लालच हमें इतना महंगा पड़ जाता है आरती कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और जो चीज बिना सोचे समझे मुफ्त में मिल रही हो उसके पीछे छिपी कीमत को पहचानना भी बहुत जरूरी है, है ना। और हमारे साथी क्या लिखते हैं?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें हल्की फुल्की मुश्किलों में डाल देता है, कभी कभी भारी मुश्किल में भी डाल देता है। विज्ञापन दाता और दुकानदार हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और मुफ्त की हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है, चाहे वो आपका कीमती समय हो, फोन का डेटा हो या घर में बढ़ने वाला कबाड़। इसलिए अगली बार जब भी फ्री का बोर्ड देखें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, और मुफ्त का लालच इस विषय की सबसे बड़ी खूबी इसका आम जीवन से जुड़ा होना है। हमारे साथी लिखते हैं कि लोग 100 रुपए की मुफ्त चीज पाने के लिए 500 का ऐसा सामान खरीद लाते हैं जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं होती। घर की अलमारी में बंद पड़ी बेकार वस्तुएं इस मुफ्त के लालच का जीता जागता सबूत है, और ये हमारे खोखले प्रदर्शन और दिखावे की संस्कृति पर करारा प्रहार भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू लेखन में इस बात का गहरा अर्थ मिलता है कि मुफ्त केवल एक ऑफर नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि मुफ्त का लालच देकर किसी भी फालतू चीज को बेचा जा सकता है। ग्राहक को लगता है कि उसने पैसे बचा लिए हैं, जबकि असल में वो अपनी जेब को वो ढीला कर चुका होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे मान लो तवे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम गए नहीं, हमें तो कुछ दूसरी ब्रांड का चाहिए, वो लाए तो बेचारे दो दो तवे जो ऑलरेडी आपके उसमें

0: रैक में रखे थे, वो अफसोस मना रहे हैं कि कब मुझे चढ़ाओगे, कब मुझे गर्म करोगे।
1: उनका तो मौका ही नहीं पड़ता,
0: मौका ही नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि घर में जितनी चीजें हैं अगर एक है तो उसकी बड़ी कद्र होगी, बहुत ज्यादा चीजें होती तो किसी ना किसी की तो बेकदरी हो ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हमारे एक साथी जो कहते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा कमजोर पहलू है जिस पर दुनिया का पूरा बाजार टिका हुआ है। ये विषय आज के उपभोक्तावादी समाज का कड़वा सच दिखाता है, जिसे बेहद हल्के फुल्के और हास्यास्पद शैली में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक के साथ एक, मुफ्त या मुफ्त डिलीवरी जैसे शब्द इंसानी दिमाग पर किसी जादू की तरह काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि मुफ्त का शब्द सुनते ही इंसान की तार्किक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जहां हमने सुना मुफ्त है बस फिर सोचते नहीं है।
0: हम जो महिलाएं ना बात कीजिएगा, हमने अपने को भी शामिल किया, हम लोग मुफ्त के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई वो साड़ी वहां पे एक के साथ एक मिल रही है ले लेते हैं, या कुछ भी कान की चीज हुई, झुमका शुमका चूड़ी कंगन, ऐसी चीजों पे हम लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, यानी चमक दमक में बस
1: खो जाते हैं।
0: वो खो जाते हैं, फिलहाल तो हम खोते नहीं है, हम सुनते हैं ये गीत।

0: आएगा क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तुरंत आ जाता है जहाँ समोसे की बात चलती है।
0: समोसा तो छोड़ो, इमली, कैथा, बेर, कमरक,
1: बस करो
0: ना, चूरन, पानी के बताशे। तो तुम्हारे तो पानी आ गया, मुझे तो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारे जो साथी हैं, सखियां हैं, तो वो बताएं कि ये सब चीज जो मैंने नाम लिया है, सबने आसपास देखी भी है, तो खाई भी है ना अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो किसके किसके मुंह में पानी आया ये बताएं, है ना। और हमारे साथी लिखते, मुंह में पानी आना हिंदी साहित्य में मुहावरों का एक विशेष स्थान है। ये हमारी भाषा को सुंदर, सजीव और असरदार बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार मुहावरा है मुंह में पानी आना, और इस मुहावरे का सीधा संबंध हमारी जीभ, स्वाद और मन की इच्छा से है। किसी भी पार्टी समारोह में, शादी ब्याह में जाते हैं, या फिर वो जमाना याद आता है पत्तल पे जो खाना परोसा जाता था, पंगत में हम बैठते थे तो वहां पर सब चीजें देख के तो मुंह में पानी आता था, रायता आ गया या रसगुल्ला आ गया, तो फिर पूछो मत, है ना। तो चलो आगे हमारे साथी क्या लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर मन ललचा जाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है और मुंह में लार बनने लगती है। इसी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को भाषा में एक खूबसूरत मुहावरे का रूप दिया गया है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आपके समाज चीज को देखिए, इतना अच्छा आपने रेसिपी बनाई है कि एकदम मुंह में पानी आ गया,
0: या बगल वाला कुछ बना रहा हो उसकी महक दूसरे के उसमें घुस जाए, घर में नाक में वो सुगंध ले गया, भाभी जी आपने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे तो लग रहा था कि बस खाने को मिल जाए, मेरा तो मुंह में पानी आ गया। ऐसी बातें भी होती है। और हमारे साथ ही लिखते, मुंह में पानी आना मुहावरा हमारी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अच्छी चीजों को देखकर उसका मन मचल ही जाता है, और ये मुहावरा हमारी आम बोलचाल को सरल, रोचक और जीवंत भी बनाता है।
1: बिल्कुल। और एक और साथी है जो लिखते हैं कि यह हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा मुहावरा है और इसका संबंध हमारे खाने पीने की इच्छाओं से है। और साथ ही इसके अभी इन्होंने पूरी लिखा हुआ चीज लिखी हुई है कि किसी भी चीज के बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मिठाई या अचार, इनको देख के हमारा जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया करता है और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है।
0: नहीं देखो, ये चाट पकौड़े ये सब जब जाते हैं ना मेले ठेले में जिसे कहते हैं बाजार में, तो ये सब चीजें देख के तो बिल्कुल पानी आना स्वाभाविक ही होता है। और मुंह में पानी आना ये मुहावरा लालच या इच्छा जैसी अमूर्त भावनाओं को एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से बेहद सरलता से व्यक्त करता है। इसका प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है, कि किसी भी आकर्षक वस्तु, धन या अवसर को देकर पैदा होने वाले लालच के लिए इसका खुलकर प्रयोग होता है। सरल शब्दों के कारण ये आम बोलचाल से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक में समान रूप से बिल्कुल फिट बैठता है। और हम सोचते हैं यहाँ पर हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
2: बिल्कुल।

0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे घर में बस हमारे बड़े भाई हैं जिनके मुंह में गोल गप्पे देखकर पानी आ जाता है. गोल गप्पे देखकर फिर वो नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, अब 80 साल के हो गए हैं फिर भी नहीं मानते, मतलब रुकते नहीं, उनको ऐसा लगता है ना.
1: एक और साथी जो कहते हैं कि मुंह में पानी आना इस मुहावरे का अर्थ है जीभ ललचाना या किसी चीज को खाने की तीव्र इच्छा होना. अक्सर हम सबके मुंह में कुछ न कुछ देखकर तो पानी आ ही जाता है. और मेरे लिए वो क्या है वो मैं बताती हूँ. मेरे लिए वो है घर का चावल, दाल और चोखा, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है. बहुत सिंपल खाना है पर मुझे बहुत पसंद है. कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है जब हम अपने किसी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है. वाक्य प्रयोग मतलब अगर जब भी बारिश का मौसम हो तो क्या होता है चाय और पकौड़े की एकदम से लगता है ना याद आ जाती है. तो पकौड़ों की जब याद आती है खुशबू आ रही होती है हमारे एकदम तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना.
0: बिल्कुल. और एक साथी लिखते हैं कि भाई मुझे तो खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर मिठाई देखकर मुंह में पानी जरूर आ जाता है. अच्छा कह भी रहे खाने पीने में इंटरेस्ट लेकिन मिठाई देख के हो जाता है पानी. ये तो भाई आपने कमाल की बात करी. और इसी तरह लिखते हैं कि बचपन में मैं कच्ची इमली और कच्ची बेरी जब भी देखता था मेरे मुंह में पानी आ जाता था, खूब चटकारे कर खाता था. मैं अभी सखी सहेली प्रोग्राम में कमेंट लिख रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया. और कच्ची इमली और कच्ची कैरी खाना कम हो गया, नहीं तो ज्यादा खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं. क्या बात है.
1: और एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि मेरे पापा जब भी अपने हाथों से घेवर बनाते थे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था.
0: तो चलो भाई इसी के साथ साथ हम लोग एक गीत की ओर बढ़ चलते हैं.

0: तो आरती देखो बातें करते करते प्रोग्राम का समय कैसे बीत चला पता ही नहीं चला, तो लेते हैं सबसे विदा सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता जमील खान। इनकी वेब सीरीज गुल्लक तो आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। आइए सुनते हैं अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है।

0: एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच की सादगी से अपना सफर शुरू किया, सिनेमा और स्क्रीन पर अपने किरदारों से जाने गए और एक बहुत ही खूबसूरत शो गुल्लक के जरिए लाखों दिलों का हिस्सा बने हैं। हम बात कर रहे हैं गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान जी की। जमील खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बाइस फख्र चीज है कि मैं विविध भारती के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और दिल खोल के बातें करूंगा।
0: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, दिल खोल के बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। तो शुरुआत हम चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, कुछ रेडियो
1: मेरी यादें हैं उसकी बात है। तो देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही
0: जी,
1: तो उतना ज्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन जो म्यूजिक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस जमाने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
0: कुछ भी काम करते हुए वो यादें हमेशा बरकरार रहती
1: है। तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में खास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पे कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
0: जी।
1: लेकिन जो एक
0: सफर का साथी,
1: हाँ सफर का साथी जो है, और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हो चाहे नए गाने हो, खासतौर से पुराने गाने जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है, और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
0: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे, घर का परिवेश कैसा था, और स्कूल के दौरान या उस वक्त हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है, हमेशा याद रहती है, बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
1: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा है।
0: अच्छा,
1: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की
0: जी,
1: और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे। और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने लगा।
0: क्या बात है।
1: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के
0: जी,
1: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
0: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
1: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा एज सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा
0: जी।
1: तो वहां से शुरुआत हुई, और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहां भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने IIT का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो JEE का होता है, उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेस वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया, BA कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया, शेवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक
0: जी,
1: और फिर यह AMU

0: ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने
1: जी।
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वो जरूर मिलती है, तो मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता
1: जी।
0: है। तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए
1: जी।
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो दो प्रोडक्शन जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी सुना है
0: जी। तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखा है उनसे और अभी भी सीख रहे हैं। ज़्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नज़रिए के तौर पे उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत प्यार किया तो डरना
1: क्या, प्यार किया तो डरना क्या, आइकॉनिक गीत
0: जी।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नज़र किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हों या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी, और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नजरिए से, और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीजें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है,
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की, अच्छा, लोगों से काम मांगने का
0: जी।
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हों, चाहे वो एड्स हों, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया, और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर,
0: वो एक नींव है
1: जी,
0: जहां से सब चीजें शुरुआत होती है और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
1: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत, और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
0: जी,
1: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले। हाँ।
0: अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
0: क्या बात है, क्या पसंद है, सुनवाते हैं गीत
1: जी।

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की, एक लंबी फहरिस्त है
1: जी,
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है
1: जी।
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं
1: जी।
0: एक तो जहां से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म से
1: जी।
0: हम दिल दे चुके
1: सनम, रामलीला भी उनके साथ,
0: रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर
1: जी,
0: बिल्कुल अलग किरदार। और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, तो क्या डिफरेंस है और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो है वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है, वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
0: बिल्कुल जी, तो लार्जर देन लाइफ,
1: लार्जर देन लाइफ
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में
0: जी।
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं अब तो,
0: बिल्कुल,
1: और बाकी तमाम चीजें तो है ही, तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगे, चाहे 200 टेक लगे,
0: अच्छा,
1: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते
0: जी।
1: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं
0: जी,
1: जो उनको वो चीज दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है।
0: बिल्कुल।
1: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है।
0: स्पॉन्टेनियस,
1: हाँ,
0: स्पॉन्टेनियस
1: बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें। कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
0: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा

0: जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर
1: हम्म,
0: कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें, जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
1: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
0: श्रीकांत में आपने काम किया?
1: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत,
0: श्रीकांत,
1: श्रीकांत मैं कह सकता हूं कि थोड़ा
0: हाँ
1: सा टफ था,
0: जी
1: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा, और क्या कहते हैं, ऐसी शख्सियत जो
0: जी
1: बहुत ही अजीम, बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है,
0: हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: सुना
0: बिल्कुल
1: है, देखा है,
0: बिल्कुल
1: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की।
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर, मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
0: हाँ हाँ
1: एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे, तो
0: बिल्कुल
1: अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा।
0: जी
1: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था, और थोड़ा मुझे डराया भी उसने
0: अच्छा,
1: कि ये
0: ज्यादा
1: सही।
0: तैयारी के साथ
1: हाँ
0: उतरे
1: हाँ
0: आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
1: चिंगारी कोई भड़के
0: क्या बात है, आपकी पसंद। बिल्कुल सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है। गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार। अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है?
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो एपिसोड्स आएंगे।
1: जी, दो चीजें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया,
1: घर घर का हिस्सा हो गया, और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर
0: जी
1: अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान। ये मेरी नॉर्मल जबान है,
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना

0: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
1: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं उसकी जो एपिसोड्स आएंगे।
0: जी दो चीजें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
1: घर घर का हिस्सा हो गया,
0: घर का हिस्सा हो गया, और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई है, जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान, ये मेरी नॉर्मल जबान है,
1: बिल्कुल
0: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा, स श ज ज, और मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे, तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी
1: जी,
0: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
1: क्या है, बिल्कुल
0: क्या
1: चुनौतियां हैं,
0: क्या चुनौतियां हैं। तो उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पर जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहां से आता है, और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहां से उठाई हुई चीजें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं है तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
0: जी जी, और आंख कान खुले रखना, ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें, वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
1: और यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा कर रहे, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है, क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है।
0: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है, और एक बात जब मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने लगे कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी, और मेरे क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाई मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल।
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है, और मैं यही कहूंगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं, और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ द सी ऑफ लाइट्स,
0: राइट,
1: उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ का

0: माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
1: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहाँ पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पर ख़त्म भी हो जाता था
0: जी।
1: तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखी मुझे। तो फ़र्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है
0: जी। और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
1: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूंगा मैं, कोई कमाल की चीज आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूंगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा, अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं जरूर करना चाहूंगा। लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फला के बाप है, कर लिए। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूंगा उसको
0: जी।
1: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैच्योर लव स्टोरी में करना जरूर चाहूंगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो चीज की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो जरूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतजार हम करें?
1: अभी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक फिल्में हैं। सूरज बड़जत्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने, और एक फिल्म जो कर रहा हूँ, जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, वो डेट्स अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा
0: जी।
1: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेजी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेजी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज में से तो गुल्लक का सीजन 6 आएगा अगले साल,
0: उसका इंतजार रहेगा हमें।
1: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा जा रहा है वो
0: जी।
1: तो यही सब है, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आए। आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह
0: हमें भी इंतजार रहेगा
1: जरूर।
0: आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
1: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफी फेवरेट रहे, तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी, अमर अकबर एंथनी
0: जी।
1: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो, अमर अकबर एंथनी।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेवर्ड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी
0: जी।
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले
0: जी,
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन है कि डायरेक्टर से बात हो रही थी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब हैं, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं
0: जी।
1: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल है हमारे, उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने। और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और लेजेंड है वो।

0: तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है।
1: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
0: जी,
1: वो बताना चाहेंगे। तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
0: जी,
1: कभी कभी मजेदार भी होती है
0: जी जी,
1: उस बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है, एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
1: एक और।
0: हाँ तो सर एक और करते हैं
1: जी,
0: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है, कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुआ था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई तगड़ी। लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया।
1: बेहोश हो गए
0: कुछ, मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँ मैं, फिर होश आया तो करें सर उसने भी, जब उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था ये, वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिंप है।
1: अच्छा।
0: हाँ कुछ एक सीन में,
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे।
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे, क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
1: जी जी जी।
0: तो वो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए, और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का, और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर देख चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिये वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और जब वो गुजर गया फिर वापस आया। तो वो
1: एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में,
1: बिल्कुल,
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप,
1: बिल्कुल।
0: अब उसको शॉट रोक नहीं दिया, ये वहां से रोको यार भाई नहीं आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है,
1: बिल्कुल। कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके से?
0: बेसिकली देखिए मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है, और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे
1: जी।
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो है जो अल्फाज है वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में, तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूं। और जहां तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूं, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूं
1: जी।
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है, डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है
1: जी।
0: और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज

0: में या आप जो पहनावा है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है।
1: आजकल वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले, तो गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक एक होता ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना
1: जी,
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
1: जी,
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया। और फिर शूट करके टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
0: जी,
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे की जांच नहीं करने का आदेश दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। यह आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। न्यायालय ने राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन की घटनाओं पर कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को भी कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने आज कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्य के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकता। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मेट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं 840 मेट्रिक टन प्याज लेकर दूसरी मालगाड़ी चेन्नई पहुंच चुकी है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने का एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार एवं शासन में MA की डिग्री दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान और शान की आवाजों में इस गीत से। फिल्म का नाम है तारा रमपम।

दोस्तों, अभी आपने सुना तारारंपम फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और शान की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीत विशाल शेखर का। रिजर्व सुनी प्रोग्राम का अगला गीत सोल्जर फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, गीतकार समीर, संगीत अनुमलिक का।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए दोस्तों, अब सुनिए बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाजों में युवराज फिल्म का गीत।

दोस्तों भी आपने सुना संघर्ष फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग
1: उमंग। आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
2: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने। लिखा है,
1: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
2: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
1: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
2: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
1: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकनाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
2: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
1: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकनाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
2: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए। वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया।

0: और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
1: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
0: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
1: जी।
0: वह प्रजा मंडल का सदस्य था। उसे प्रजा मंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
1: जी।
0: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
1: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
0: हे लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
1: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
0: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
1: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
0: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
0: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
1: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
0: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओं, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb.
4: Dear tree, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
4: Dear cow, do you know my name?
6: I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
4: Dear grass.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम My Name।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है, और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को

0: था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
3: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
2: हाउ आर यू?
4: हैप्पी बर्थडे स्टीफन। थैंक यू।
2: कांग्रेचुलेशंस।
4: थैंक यू जॉन। थैंक यू सो वेरी मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
2: ओह फाइन फाइन।
4: थैंक्स फॉर कमिंग इन। प्लीज कम इन।
3: यस यस। व्हाई नॉट?
2: कम कम। हे
3: कम
2: जॉन, प्लीज कम हियर।
3: श्योर।

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक

0: क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
1: मैं जीना चाहता हूं, तो दो साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
0: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण

0: और श्रवण विज्ञान में एक अमेरिकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्रेट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
1: प्रोफेसर डेनिस
2: जी,
1: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
2: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
1: ओह।
2: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
1: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
2: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
1: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
2: जी।
1: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
2: तो लीजिए सुनिए।
3: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से

0: दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से। शाम के 6 बजन वाले ने लोहन सुनो दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में MA की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz 'ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 G, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड,
5: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड एट SU 845, NSE मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
6: लोन सुनो अक्सर फिल्म का गीत हिमेश रेशमिया दी आवाज़ विच।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। हरियाणा विधानसभा में गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के संबंध में सरकारी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों और प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के सौंदर्यकरण का काम सरकार की प्राथमिकता, प्रक्रिया शुरू और देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से बाजार में प्याज भेजना शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि वैश्विक संकटों, संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों के बीच ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत किस स्थान पर है।
3: जनवरी फरवरी में पूरा गल्फ क्राइसिस शुरू हुआ था, तेल की समस्या, सप्लाई चेन की समस्या थी, दुनिया में अनिश्चितता थी, देयर वाज ग्लोबल अनसर्टेनिटी एज वेल। उसके बावजूद भारत की इकोनॉमी 7.8% आई है।
1: उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताने वाले उनके बयान को लेकर निशाना साधा। श्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि श्री गांधी को आर्थिक प्रबंधन और आर्थिक विकास की समझ नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित देशव्यापी गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के संबंध में सरकारी प्रस्ताव पेश किया और सदन ने इस अभियान को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का प्रण लेते हुए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ यह अभियान अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि समरसता यात्रा 5 अक्टूबर को हरियाणा में पहुंचेगी और 5 नवंबर 2026 तक चलेगी। यात्रा के स्वागत के लिए इसके मार्ग में पूरे प्रदेश में प्रवेश द्वार और स्वागत स्थल तैयार किए जाएंगे तथा जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 26 नवंबर से 15 जनवरी तक छात्रावासों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग केंद्रों में विशेष संवाद आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ भूमि पर बन रहे भव्य गुरु रविदास धाम में संत रविदास जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने और आमजन के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा ये निर्देश हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा 22 जून को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(2) के तहत एक शिकायत में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को लोक सूचना अधिकारियों की जानकारी सहित अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य सभी सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के सौंदर्यकरण का काम सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने सदन में थानेसर से विधायक अशोक कुमार अरोड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्न का शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद कहा कि समूचे कुरुक्षेत्र का विकास और सौंदर्यकरण किया जा रहा है।
1: आदरणीय मंत्री जी ने उसके बारे में पूरी डिटेल को बताया। लगभग वहाँ हर चौक के टेंडर भी लग रहे हैं, कुछ के टेंडर प्रक्रिया में है, हमारा वहाँ रेस्ट हाउस टेंडर प्रक्रिया में है, उसके सौंदर्यकरण की पूरी योजना बनाई है, जो हमारा जीता द्वार है उसके ऊपर काम चल रहा है।
0: इससे पहले श्री विपुल गोयल ने सदन को बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा ब्रह्म सरोवर की पूर्वी दिशा के पास स्थित मेला क्षेत्र की भूमि के समुचित विकास हेतु एक व्यापक विकास योजना तैयार करवाई जानी प्रस्तावित है। मेला क्षेत्र के समग्र विकास के साथ साथ कुरुक्षेत्र के सौंदर्यकरण, आधारभूत एवं ढांचागत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से ब्रह्म सरोवर की पूर्वी दिशा पर समय समय पर लगभग 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे दिल्ली NCR, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज प्रमुख बाजारों में भेजा जा रहा है। भिवानी के भीम स्टेडियम में कल से 15 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अंबाला सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल BR शेखावत ने कहा कि भर्ती रैली में उम्मीदवारों का प्रवेश प्रतिदिन सुबह 4 बजे से किया जाएगा। कर्नल शेखावत ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 7

7,138 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। हरियाणा के 118 राजकीय प्राथमिक, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बेहतरीन भवन बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सर्वेक्षण करवाया था, जिन 118 स्कूलों के भवन नहीं थे उन्हीं स्कूलों में आधुनिक भवन बनवाए जाएंगे। पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर आज सुबह गांव महेशपुर के निकट तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय गोवर्धन योजना आज से प्रभावी हो गई है। यह योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना 2035-36 तक लागू रहेगी। संपीड़ित बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाएगी। इस योजना का उद्देश्य घरेलू संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है। यह बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 6 तारीख को इस योजना को मंजूरी दी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। हरियाणा विधानसभा में गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के संबंध में सरकारी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों और प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के सौंदर्यकरण का काम सरकार की प्राथमिकता, प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हूं तुसी चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबरें सुनो। पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली साड़न से रोक लगाने लिए वड्डे पद्धर से जागरूकता मुहिम चलाने का सदा दिता। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वालों पटियाला जिले च नशा रोकू गतिविधियों का जायजा। कहा नशा की सप्लाई चेन तोड़ने काबू किए जाएंगे नशा तस्कर। पंजाब सरकार वालों सीनियर नागरिकों की भलाई लिए 598 लाख तो वध दी सूबा कार्ज योजना में प्रवानगी। जलंधर में श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पुरब में समर्पित रन फॉर इक्वलिटी मैराथन 650 तो वध अथलीटा ने हिस्सा लिया। पंजाब च चलाई जा रही मिशन क्लीन पंजाब मुहिम सूबे भर में उत्साह नाल जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज सूबे में पराली साड़न को रोकने एक विशाल सूचना से जागरूकता मुहिम चलाने का सदा दिता है। सूबा सरकार के निरंतर उपराले कारण 2023 तो 2025 दरमियान अजिंह घटनावां च पहला ही 86% कमी आ गई है। अधिकारियों इस मुहिम को पिंडों के ब्लाकों में होर प्रभावशाली ढंग में ले जाने के निर्देश देंदे मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर सरकारी संगठन समाज सेवकों पंचायतों के किसानों की सरगर्म भागीदारी वड्डे पद्धर से समाजिक इन्हों प्राप्तियों एकजुट कर पंजाब के वातावरण बचाने मीडिया पहुंच मजबूत NC2 और XC2 पराली प्रबंधन जरूरी है। पराली प्रबंधन रणनीति ते एक मीटिंग की प्रधानगी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल पंजाब च करीब 30 लाख हेक्टेयर रकबे झोने की बिजाई की

0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: उपकार फिल्म के इस गीत में आवाजें थी महेंद्र कपूर और साथियों की, बोल गुलशन बावरा के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इसके बाद आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना, ये गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए जिए देश पर मिटे।

जयमाला कार्यक्रम का अगला गीत अनुरोध फिल्म से है, आवाज किशोर कुमार की है। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत ने पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: जयमाला कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार के स्वर में दाग फिल्म से। गीत के बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: मेरे दिल में आज

अभी आप सुन रहे थे दाग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल साहिर लुधियानवी के थे। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जयमाला कार्यक्रम में

अभी आप सुन रहे थे दाग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल साहिर लुधियानवी के थे। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जयमाला कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अंतराल का।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र के बोल, और संगीत था शंकर जयकिशन का।

जाबाज फिल्म से हमने इस गीत को लिया था। स्वर किशोर कुमार और सपना मुखर्जी के थे। गीत के बोल इंदीवर के थे और संगीत से धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं एन आर टंडन का लिखा प्रहसन विवाह यंत्र। आज प्रसारित होगा इसका पहला भाग। निर्देशक हैं मुख्तार अहमद।
1: वाकदान, वाह वाह वाह वाह, क्या नई सूझ है सचमुच जनसेवक। तुम्हारा आंदोलन सफल रहा तो विद्यादान, द्रव्यदान, वस्त्रदान, अन्नदान, भूदान, श्रमदान और शवदान आदि सब दानों को पीछे छोड़ जाएगा।
2: शांति दत्त का मकान कहाँ रह गया? बातों बातों में हम आगे तो नहीं निकल आए?
1: अरे नहीं यार, हम शांति दत्त जी के मकान के सामने ही तो खड़े हैं। अम्मा उधर बाई ओर देखो ना, ये क्यों भूल गए कि हम नवल किशोर रोड से नहीं हजरतगंज की ओर से गली में घुसे हैं।
2: अरे सच, ये चेतावनी कैसी? खतरा, जानवरों और मित्रों के लिए जान का, अनजानों के लिए प्यार का, इसका क्या अभिप्राय हुआ केशव सुर?
1: झक्की है, कोई ना कोई झक सवार रहती है भाई को। भाई सुना है आजकल सुधारक यंत्रों के आविष्कार में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक महाशय उसी से संबंधित कुछ ना कुछ।
2: समाज सुधारक यंत्र? यानी कि अब समाज सुधार भी यंत्रों से होने लगेंगे?
1: बात आश्चर्यजनक अवश्य है पर असंभव नहीं। जन सेवक आज क्या छूटा रह गया है मानव से। अम्मा खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कॉल बेल का बटन दबा।
2: मार डाला, तुम दबाओ। अरे यार, कॉल बेल के बटन में शॉर्ट सर्किट मालूम होता है, हाथ लगाने से करंट मारता है।
1: तो फिर आवाज दो।
2: अरे भाई शांति, शांति, शांति!
3: आप बदतमीज हैं, जाहिल हैं, आगे बढ़िए। आप बदतमीज हैं, जाहिल हैं, आगे बढ़िए। आप बदतमीज हैं, जाहिल हैं, आगे बढ़िए।
2: अरे यार केशव सुत, क्या बला है? ये शांति दत्त का मकान है या भूतों का डेरा?
1: भाई मैं तो स्वयं चकित हूं, किसे पूछा जाए। भाई साहब, भाई साहेब, भाई साहब जरा यहाँ आइएगा, क्षमा कीजिएगा, शांति दत्त जी का निवास स्थान यही है ना?
4: जी हाँ, उनके नाम का फट्टा नहीं देख रहे आप?
1: अरे साहब, नाम का फट्टा तो जरूर देख रहे हैं, पर यहाँ तो कॉल बेल का बटन दबाते हैं तो झटका लगता है, आवाज देते हैं तो गालियां मिलती हैं।
4: क्षमा कीजिए, आप प्रोफेसर साहब के गहरे दोस्त या संबंधी तो नहीं है?
1: जी
2: हाँ है, है। हम उनके क्लास फेलो है, लंगोटी है यार।
4: तब आप कान दबा कर निकल जाइए, नहीं तो आपकी जान का खतरा है। देखते नहीं वो क्या लिखा है?
1: अरे भाई साहब, लिखा हुआ तो पढ़ रहे हैं, पर ये मित्रों और जानकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों?
4: क्षमा कीजिएगा, मित्र और जानकार कुछ ज्यादा बेतकल्लुफ होते हैं और कई बार उनकी बेतकल्लुफी बदतमीजी में बदल जाती है।

0: जो तमीजदार आदमी को जरा खटकती है।
1: लेकिन हमने तो कोई बदतमीजी नहीं की, कॉलेज में तो हम उसे उल्लू के सिवाय दूसरे नाम से पुकारते ही नहीं थे, यहाँ तो बकायदा उसके असली नाम से पुकारा हमने।
0: आपसे जरूर कोई भूल हुई है, देखिए आपने काल बेल का बटन कहीं जोर से तो नहीं दबा दिया था।
1: भाई दबाया तो जोर से ही था।
0: बस तो फिर ठीक है, ठीक झटका आपको लगा। सभ्यता कहती है श्रीमान जी कि आप किसी के घर जाएं तो तमीज से आवाज दें, हल्के घंटी बजाएं और उसे लगातार बजाते ही न चले जाएं, घंटी का बटन दबाएं और इंतजार करें।
2: भाई ये बात तो ठीक है जनसेवक, ये गालियां भी शायद इसीलिए पड़ी कि तुमने बेतकल्लुफी से केवल शांति कहकर पुकारा। अरे भैया वो MSc हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जरा सम्मान से नाम देना चाहिए था हमें उनका।
0: जी हाँ, देखिए मैं खुलवाता हूँ दरवाजा, देखिए ऐसे बटन दबाएं, देखिए बजी ना घंटी, अभी जवाब मिलेगा।
3: कौन साहब है, कौन साहब है, कौन साहब है?
2: जी हम हैं, श्रीमान प्रोफेसर शांति दत्त जी MSc के इष्ट मित्र, उनसे मिलने की इच्छा से कानपुर से आए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनका अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे और चाय आदि भी नहीं पियेंगे।
3: आप धीरे से दरवाजा खोलकर भीतर आ जाइए, देखिए सभ्यता से काम लीजिएगा वरना जान का खतरा है।
4: मैं तो कहता हूँ शांति दत्त से मिलने का विचार ही छोड़ दो, यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है, कहीं सारा घर ही विद्युतमय ना हो।
2: अरे ऐसी कोई बात नहीं है, क्या 5-10 मिनट के लिए भी सभ्य नहीं बन सकते? हाँ खोलो दरवाजा, जरा धीरे से।
5: जूते यहाँ उतारिए।
4: अम्मा उतार तो रहे हैं, अब चुप ही हो जाओ। अरे अरे भाई शांति दत्त जी, आप कहाँ, यानी कि
6: आओ आओ जनसेवक आओ। ओ केशव सुत भी साथ हैं, अरे जूते हाथ में क्यों लिए खड़े हो? उन्हें वहां शू रैक में रख दो और निश्चिंत होकर चले आओ। हाँ तो सुनाओ क्या कर रहे हो आजकल?
4: वही जो कॉलेज में क्या करते थे
6: यानी कि जन सेवा। और हाँ तुम्हारी साहित्य चर्चा का क्या हाल है केशव सुत? सुना है बड़े जोरदार लेख लिख रहे हो आजकल।
2: पर अब ये लेख कहाँ चलेंगे, शांति हमारी और जन सेवक की रोटी तो गई समझो।
6: क्यों?
2: सुनो भैया, तुम विज्ञान को समाज सेवा की ट्रेनिंग दे रहे हो, समाज सुधारक यंत्र बना रहे हो।
6: तुमने ठीक सुना है केशव सुत, भाई साहित्य और प्रवचनों से अब हमारा सुधार होना असंभव है। मेरे विचार में तो केवल यंत्र ही अब हमारा सुधार कर सकते हैं।
4: तुम्हारा विचार ठीक है शांति दत्त, और देखता हूँ कि इस क्षेत्र में तुम्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है, कम से कम समाज के 2 व्यक्तियों को तो आज ही सुधार दिया तुमने।
6: अब क्या किया जाए केशव सुत, देखो ना जूते साफ करने के लिए पायदान रखा हुआ है और कोई भी जूते की तरी झाड़ कर कमरे में नहीं आता, नए नए दरी और कालीन मित्रों के गंदे जूते से खराब हो गए। इतना ही नहीं, कोई कोई तो पढ़ने और खाने की मेजों और पलंगों पर भी पांव रखकर बैठने लगे। तब तंग आकर जूता यहां निकालो यंत्र का आविष्कार किया है, और अब यदि 3 बार कहने पर कोई जूता उतारने में आनाकानी करेगा तो उसे फर्श को सलामी देनी है। और हाँ बहुत जल्द ही मैं एक सड़क कानून यंत्र भी बनाने जा रहा हूं, जिससे ट्रैफिक के सिपाहियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और एक्सीडेंट भी ना होंगे, और यदि होंगे भी तो उनके ही जो सड़क के कानून को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे।
2: धन्य हो तुम शांति दत्त, तुम धन्य हो, तुम्हारे ये यंत्र साहित्यकों और समाज सुधारकों के लिए चुनौती है। जिस काम में साहित्य और भाषण असफल रहे वो तुमने यंत्र द्वारा कर दिखाया। सचमुच आज विज्ञान से मानव के विनाश के स्थान पर उसका उत्थान ही अपेक्षित है।
6: भाई समाज सुधारक यंत्रों में सबसे उपयोगी यंत्र जिसके बनाने में मैं सफल भी हो गया हूँ वो है विवाह यंत्र।
2: विवाह यंत्र? विवाह यंत्र? ये क्या यंत्र है भाई?
6: ये यंत्र विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान करके सामाजिक जीवन को सुखी बनाएगा। भाई मेरी धारणा है कि देश को समुन्नत बनाने के लिए सुखी गृहस्थ जीवन अनिवार्य है। मानव का विकास केवल इस कारण से रुक जाता है कि उसके घर में जहां उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है उसे अपनी रुचि के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, और इसका मुख्य कारण है पति पत्नी के स्वभाव और अभिरुचि में अंतर और असमंजस्य। विवाह यंत्र बेजोड़ विवाहों को रोककर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने में सहायक होगा।
2: भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे
4: बंधु, यह अनोखा

0: आविष्कार हमें भी तो दिखाओ।
1: हाँ, मेरे साथ मेरे अन्वेषण कक्ष में आओ। लो, यहां बैठो। ये देखो, विवाह यंत्र दिखाने से पहले मैं तुम्हें भारतीय सामाजिक जीवन की कुछ झांकियां दिखाता हूं।
2: अरे ये क्या, तुमने तो घर में बायोस्कोप का प्रबंध किया हुआ है।
1: हाँ, विवाह संबंधी समस्याओं को समझने के लिए मैंने पारिवारिक जीवन के कुछ सच्चे दृश्य चलचित्रों के रूप में एकत्रित किए हैं।
3: क्यों भाई, अकेले ही आए? भाभी साथ नहीं आई?
4: उन्हें सनीमा का शौक नहीं। हरी बाबू,
3: अरे क्यों बहाने बनाते हो? यूं कहो कि वो इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे साथ बाहर निकल सके। तुमने भी क्या पत्थर गले में बांध लिया है। तुम नई रोशनी के पढ़े लिखे और पत्नी मिली एकदम देहात की।
4: क्या कहूं दोस्त, किस्मत में जो बदा था हो गया।
3: भाई तुम्हारे विवाह से तुम्हें कुछ लाभ हुआ हो या नहीं, पर मैंने तुम्हारे कुलपति गृह जीवन से बहुत कुछ सीखा।
4: वो क्या?
3: विवाह न करो।
4: हरी
3: हारे भैया, विवाह एक जुआ है। पासा ठीक पड़ा तो ठीक, नहीं तो सारा जीवन ही बैठकर रह जाता है मनुष्य का।

0: मैंने क्या, अरे मैंने क्या बंद करो अपनी ये काय, अरे देखती नहीं मैं कविता लिख रहा हूँ।
1: मैं तुम्हारे हाथ से कलम छीन रही हूँ क्या? तुम करते रहो अपनी कविता।
0: अरे भाई इतने स्वर में कविता लिखी जा सकती है कहीं? अरे कल्पना ही नहीं बन रही है।
1: मगज में कुछ होगा तो कल्पना बनेगी ना। लोग ढोल नगारों के बीच कविता लिख लेते हैं, यहाँ भजन भी अखर रहा है तुम्हें।
0: अरे अरे अरे अरे अरे नीलिमा, देखो नीलिमा, हाँ बुरा बोलोगी तो बुरा ही सुनोगी।
1: तो लो तुम करते रहो अपनी कला की उन्नति। इस घर में या कविता रहेगी या गायिका।
0: अरे अरे सुनो, अरे अरे नीलिमा।
1: क्या कहा, शादी नहीं करोगे?
2: नहीं नहीं नहीं, कह तो दिया माँ मैं शादी नहीं करूँगा।
1: लेकिन क्यों?
2: मैं ये जुआ नहीं खेलूंगा।
1: क्या कहा, विवाह को तुम जुआ कहते हो?
2: हाँ माँ, विवाह जुआ ही तो है।
1: हाय हाय, तुम क्या कह रहे हो बेटा, मैं क्या बिना बहू के रहूंगी?
2: नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
3: बेटी हेमा, आखिर शादी से इनकार की कोई वजह भी हो? कहीं हमारा मुंह तो काला नहीं करोगी?
4: पिताजी आप अपनी बेटी को गलत न समझिए, जी जी के गृहस्थ जीवन ने मेरी आंखें खोल दी हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी बेटी भी हर रोज आपके दरवाजे पर पड़ी रहा करे?
3: उसका भाग्य उसके साथ बेटी। अब हमने तो इतनी जांच पड़ताल के बाद रिश्ता तय किया था, लता की रुचि ही रमेश से नहीं मिलेगी, ये कौन जानता था।

विवाह यंत्र, अभी आपने ये N.R. टंडन द्वारा लिखित प्रहसन सुना। आज प्रसारित हुआ इसका पहला भाग। दूसरा भाग आप सुनेंगे कल हवा महल में। इसके निर्देशक मुख्तार अहमद। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक।

रांझना फिल्म का ये गीत था जिसे गाया था मधुश्री, आंचल और चिन्मयी और विशाली ने। इस गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और धुन तैयार की एआर रहमान ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत जिसे गाया है चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल और शेखर ने संगीत तैयार किया है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: भाग मिल्खा भाग फिल्म के इस गीत को गाया था दिव्य कुमार ने। गीत के बोल प्रसून जोशी के थे और संगीत तैयार किया था शंकर एहसान लॉय ने। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक अंतराल का।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही

0: दरालगा।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: FM लाइफलाइन प्रोग्राम के बारे में आपको एक सूचना दे दें। FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। FM लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। इसके संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई सवाल है तो कल बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
5: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम चित्रलोक, और अब आपको सुनवा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने। गीत के बोल इशाद कामिल के हैं और संगीत तैयार किया है जीत गांगुली ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नीति मोहन की आवाज में अब सुनते हैं किक फिल्म का गीत। मयूरपुरी के बोल और संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen.

0: learn to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र

0: यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
1: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
2: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़

0: प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। अगला कार्यक्रम है आपके लिए।

बेमिसाल फिल्म के इस गीत को गाया किशोर कुमार ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले के स्वर में अभी आपने सुना नमकीन फिल्म का गीत, जिसे गुलजार ने लिखा और राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं पुलिस पब्लिक फिल्म का गीत, असद भोपाली के बोल, राम लक्ष्मण का संगीत।

वो दिन। अब आपको सुनवाते हैं यशुदास और सुलक्षणा पंडित का गाया सावन को आने दो फिल्म का गीत। इस गीत के बोल माया गोविंद के हैं और संगीत है राजकमल का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में ये गीत, बोल कल्याण जी आनंद जी का, और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: FM लाइफलाइन प्रोग्राम के बारे में आपको एक सूचना दे दें। FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। FM लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। इसके संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई सवाल है तो कल बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।
4: विविध भारती,

1975 में इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक पलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है श्री अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं बस वही एक चेहरा नजर आता है। इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जी चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म ना हो।

पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों की मोती सजा देगा। कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था। राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

0: कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के बारे में आपको एक सूचना दे दें। एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंडोक्रिनोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा हिप फ्रैक्चर, इसका कारण और निवारण। इसके संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई सवाल है तो कल बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झर जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहां छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टायर मारे।

0: प्रजा के लिए मैं चुनती हूँ वह जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामने और उज्जवल बनाए। वीको टर्मल क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ GDP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: लोहन सुनो मैसोपुरियानो।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा

0: पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।